नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारी कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है।

0: इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, जीवन में पहली सफलता के बाद रुकी नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 317। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। 10 बॉम्बे टॉकीज में पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग अवंतिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 विविधा में प्रस्तुत होगा सत्येन कप्पू दुर्गा खोटे चित्र भारती पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। दो बजे त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नक में, 3 मन चाहे गीत, प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा भाग, महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण, रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। शाम 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के।

संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा। इस बातचीत का पहला भाग आज प्रस्तुति अनुश्री पाठक के शाम 5 बजे छाया गीत।

शाम 5:30 पर तराने, नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता आपको फिर से याद दिला दे। श्रृंखला सुनेगा ख्याल और तरानों की विशेषताएं, भाग 5, कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुल उत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7:00 सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा सुनेगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत, आलेख स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी चिट्ठी, लेखक सुनील हेत्री अब्राहम, निर्देशक गुरमीत रामल मीर। 8:15 पर चित्रलोक, 9:00 आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, 10:00 छाएगी, 10:30 पर ढलती जाहिरात और 11:00 सुनेगा विविधा। आप सुन रहे थे आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 317।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 317, आज आपने सुना।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी संवादी न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

I got it.

अब मैं द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। इसमें कूट तान, पेंच, बल, छूट, जरब और गमक तानों का प्रयोग है। यह क्लिष्ट जरूर है, किंतु श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। तो करुण रस प्रधान इस बंदिश को आप सुनिए।

0: संगीत सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगो

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार, स्वागत है।

अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, सी रामचंद्र की धुन थी। लीजिए अब सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

0: है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दो बीघा जमीन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थी, शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।
1: जम्बो जेट, जम्बो जेट, लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।

0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर
1: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी तरकती है।
3: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
3: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं
3: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
5: प्यार का राग सुनो रे
3: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है सदा रहेगी।
3: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत करते हैं। आपको सुनवा रहे हैं हुस्न का चोर। इस फिल्म का गीत आवाज संध्या मुखर्जी की है, बोल राजा मेहदी अली खान ने लिखे हैं और संगीत से सजाया है इस गीत को बुलोसुई रानी ने।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में हमदर्द फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे प्रेम धवन, संगीतकार थे अनिल विश्वास।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है

0: अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ठोकर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज थी, मजाज लखनवी के बोल थे और सरदार मलिक का संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने रामी धोबन फिल्म से लिया था, गीता रॉय की आवाज थी, राम मूर्ति चतुर्वेदी की रचना और हीरेन बोस की तर्ज थी। और इसे अभी जो गीत आपने ठोकर फिल्म का सुना, इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत। इस गाने में आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: कसम।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की ये रचना आपने सुनी राहुल देव वर्मन की तर्ज थी। अब लीजिए सुनिए दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। इसे आनंद बख्शी ने लिखा है।
2: के

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हम शक्ल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आरटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम है राही प्यार की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

आइए फिर स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में। अभी आप ये गीत जो सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलशन बाबरा।

0: हाथ की सफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में। गीत गुलशन बाबरा का था। संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
4: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
3: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
4: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
3: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
4: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध

कसौटी फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए कागज की नाव फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और मनहर की आवाजें हैं, नक्श लायलपुरी की रचना, सपन जगमोहन की धुन।

कागज की नाव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मनहर की थी, रचना नक्श लायलपुरी की थी, संगीतकार थे सपन जगमोहाने सी। गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
4: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को

0: 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। जीएसटी दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
1: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है, उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
0: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
2: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
0: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को GOV में मिसमैच है, तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में, लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
3: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक केरल माहे तमिलनाडु तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में

0: आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल हैं। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना

तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदे हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर ये परत आंखों की सतह पर फैलती रहती है।

0: बट है।
1: वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें बोलती हैं और संवेदनशील मन सुनता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें विशाल मिश्रा तुलसी कुमार की थी, मनोज बंदशेर के बोल थे विशाल मिश्रा की तर्ज थे। ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में, गीतकार और संगीतकार हैं आरको।

0: दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक।
3: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित और साथियों के, संगीतकार थे आदित्य देव। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल के और साथियों की आवाजें थी, गीतकार और संगीतकार थे अमाल मलिक प्रीतम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

आज है वर्ल्ड क्लीनअप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस। 20 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए हमें प्रेरित करता है, साथ ही कचरे की समस्या से निपटने के लिए हमें प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सफाई सिर्फ अपने घर या कार्यस्थल की सफाई तक सीमित नहीं है। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, जल स्रोत, समुद्र तट और हमारे आसपास का पूरा पर्यावरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, हमारी साझा जिम्मेदारी है। अनियंत्रित कचरों से जल, मिट्टी, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। ये हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है। इसका समाधान केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कचरा फैलाने वाला हर व्यक्ति कचरे को साफ करने में अपनी उचित भूमिका निभाए, ये काफी हद तक निदान हो सकता है।

घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, कागज आदि जैसे योग्य वस्तुओं का रिसाइकिल पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थलों को गंदा ना करना और इसी तरह खाने पीने की चीजों को यानी भोजन और पानी की बर्बादी को कम करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए विश्व सफाई दिवस पर हम खुद भी सफाई का ध्यान रखें और अपने परिवार और आसपास के लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करें, बच्चों को अवश्य सिखाएं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा परिसर में आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना। ये गुलाब गैंग फिल्म का गीत है।

माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक

0: तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप कृष्णा की आवाज में सुन रहे थे। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने धुन बनाई थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस है। हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के महत्व को रेखांकित करने और विद्यार्थियों के जीवन में शारीरिक गतिविधियों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्वविद्यालय ज्ञान और बौद्धिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के मैदान में सफलता और असफलता दोनों ही का सामना विद्यार्थी को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। आज की जीवन शैली में शारीरिक निष्क्रियता काफी बढ़ गई, कहा जाए तो ये प्रतिबद्धता भी है। जैसे लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना, डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग, व्यायाम के लिए समय न निकाल पाना स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं और नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम भावना, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश स्पष्ट है कि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, प्रशिक्षित प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा होने के साथ साथ संतुलित और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपको

सलीम सुलेमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नक्श अजीज अंतरा मित्रा की आवाजें थी, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल, सोना महापात्रा

यात्रा की आवाजों में आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर केंद्रित होगा। फिल्मकार महेश भट्ट पर आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। सुनना ना भूलिएगा।

लक्ष्मी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी शशि डीजे खुशी की, गीतकार थे गगन आहूजा और संगीतकार शशि डीजे खुशी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत, सविता सिंह को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी मेरे लिए वो था कि

ऐसा कमाऊं किसी तरह मैं। पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहां मिला नहीं ज्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई और वहां पर बड़ी मेहनत से काम किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहां पर मेरे भाग्य ठीक थे, जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे, तो मैं बाहर गया तो वहां एक व्यक्ति थे श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था, उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आई मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट, और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई, धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए, मंजिलें और भी हैं शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई फ्लॉप हो गई, नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी, विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाय डे राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years wasted। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

0: मेरी नजर।
1: अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं। तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विद सोलेस। शायद किससे और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ, सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान से अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेज खत्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये, हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज्यादा लंबा नहीं था, 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जब पीछे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसके लिए मैं मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा है, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेस ऑफ वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूं, मानता रहा हूं, और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जो हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथावस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई रास 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर

0: रखने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा सेठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
0: जी, और आकाशवाणी से पूर्णिमा के गायक गीत न जाने कितने बजते रहे, और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
1: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया,
0: जी
1: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया,
0: जी
1: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं।
0: जी
1: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे,
0: जी
1: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्य हो गई आज।
0: ये आपका बड़प्पन है,
1: मतलब अगर मैं नहीं आती ना
0: जी।
1: तो मुझे दुख होता, मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
0: जी
1: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ।
0: जी जी
1: तो मैं आई, इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है।
1: जी जी
0: वहां तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई, और वहां पर भी वो हमेशा टॉप पे रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
1: जी जी एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
0: अच्छा।
1: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
0: अच्छा।
1: और पढ़ाई लिखाई, संगीत की तालीम, सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से।
0: जी।
1: फिर मुझे लगता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्ना दा के साथ, मन्ना दा जी के साथ।
0: अच्छा।
1: आए मन्ना डे जी के
0: जी,
1: साथ
0: जी।
1: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी,
0: जी
1: उनको असिस्ट किया।
0: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम में
1: है
0: बजाते हैं।
1: हाँ।
0: जी।
1: तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहां पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
0: अरे क्या बात।
1: मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि फिल्म महल की गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का बहुत सहयोग रहा है।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
0: जी जी।
1: बस फिर डैडी ने बहुत अपने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह, लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता।
0: जी जी।
1: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है, पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता डैडी कहीं वहां पीछे रह गए। बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
0: जी जी जी।
1: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे
0: जी,
1: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
0: अच्छा।
1: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं कंट्रीब्यूशन।

0: डैडी कर रहा है।
1: जी जी जी, आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
0: जी,
1: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
0: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स हैं यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शंस हैं।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
1: जी
0: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद
0: जी
1: करते
0: जी
1: हैं किसी न किसी
0: बिल्कुल
1: रूप में।
0: बिल्कुल।
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी,
1: जी
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में,
0: अच्छा, इससे
1: क्योंकि
0: भी पहले?
1: जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला,
0: जी
1: विरासत में ही संगीत मिल गया। तो और मेरे मायके की तरफ की, मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है,
0: जी
1: आई कहती थी मैं माँ को,
0: जी
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या, मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता
0: बड़े
1: रहता
0: बड़े
1: था, है ना,
0: संगीतकार गीतकारों का आना।
1: बंगीत और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के, वो थी आशा जी। मैं
0: अच्छा,
1: आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ,
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ
1: तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी,
0: जी
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो और वो आशा
0: बहुत सी
1: जैसी हो।
0: जैसी हो। अरे क्या बात है।
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको
0: देखने को बिल्कुल
1: थोड़ी
0: बिल्कुल,
1: बहुत
0: और आप
1: नजर,
0: उनसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल एक बाल बराबर उनकी छवि शायद
0: हाँ।
1: नजर आती होगी
0: नहीं, होता
1: आपको,
0: है कलाकार
1: है
0: के
1: ना।
0: साथ, जब हम अपना किसी को आइडियल मानते हैं
1: जी,
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे
1: हाँ।
0: अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं, तो वो डबल हो गया ना।
0: हाँ, आप ही का गायवा सुनते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: आपकी
1: बिल्कुल
0: पसंद का ही गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया,
1: हाँ
0: सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी। तो
1: अच्छा।
0: मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी, वो इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने, वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी, ये
1: जी
0: अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी।
1: जी
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगा लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर,
1: जी
0: गुड्डी।
1: जी
0: तो पहले तो ये कि डांस डांस, तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं
1: जी
0: क्या 5-6 साल की थी, और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी,
1: संगलूंगी।
0: तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो
1: जी
0: सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग, और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते

0: होते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी। तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे।
1: जी
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है।
1: जी
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ। थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे,
1: जी
0: और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967।
1: जी
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो, डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर, 1967, हाँ,
1: बिल्कुल
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे पर
1: जी
0: तुम गाना गाओ,
1: अरे वाह
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया
1: हाँ
0: करते थे,
1: हाँ
0: ना
1: बिल्कुल
0: ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते थे।
1: जी। और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता है, तो
1: देखिए
0: कुदरत ने शायद, हो सकता है
1: बिल्कुल
0: कि दिमाग की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहां गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल। तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने, पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ
1: वाह
0: माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो गए
1: अरे वाह अरे वाह
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा।
1: जी
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं, एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने
1: चिकने
0: पात,
1: पात
0: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं
0: है
1: आप
0: ना, वो
1: बिल्कुल
0: उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता
1: बिल्कुल सही
0: है ना।
1: कहा जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस तो दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से, मैं 7 साल की थी तब,
1: जी
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी जी
0: कि डांस तो रहने ही दो,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ
1: आप
0: बस।
1: लोगों को नचाएंगी ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने। और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त
0: जी,
1: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जयकिशन जी नहीं,
0: अच्छा
1: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था, तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
0: अच्छा
1: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे। तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे,

0: तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना,
1: बिल्कुल.
0: बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था नानी तेरी मोरनी
1: क्यों
0: को,
1: मोर
0: है ना।
1: ली गई. जी.
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ।
1: हाँ.
0: सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म
1: जी.
0: बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म
1: अच्छा.
0: बतौर स्क्रिप्ट
1: जी जी
0: राइटर्स,
1: बिल्कुल.
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स थे,
1: हाँ.
0: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट फिल्म
0: सुपर
1: थी.
0: डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को।
1: जी.
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती
1: बिल्कुल.
0: है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमिका
0: बिल्कुल
1: थी वो आपके गायन कौशल को निखारने
0: एकदम।
1: में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने.
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो ले लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी.
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए थे।
1: जी.
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा गाती हो तुम, सीखती हो। तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ। मैंने कहा हाँ, अच्छा तो क्या क्या गाती हो। मैंने सारे गम, अच्छा, किस सुर से गाती हो। मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनो सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गमा पा पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम, अरे ये तो चलेगी नहीं दौड़ेगी। और
1: अरे.
0: बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए,
1: जी.
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल, अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह.
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969,
1: जी.
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डेकर, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी,
1: पर
0: वही
1: आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया.
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी.
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो। मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी
0: तो
1: वो.
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी। तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं।
1: हाँ.
0: बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर.
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी, हाँ, और सुमन जी आई,
1: जी
0: सब आए थे,
1: जी
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे, हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में,

0: तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशंस, सारे म्यूजिशंस के साथ ही हमको खड़ा किया था, और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन। फर्स्ट टेक ओके,
1: जी जी
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया,
1: जी
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी, और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि।
1: जी
0: तो घर में आते थे, और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे।
1: जी
0: तो मौसी ने बोला, तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए। तो
1: अच्छा।
0: उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस
1: हाँ
0: वक्त,
1: हाँ
0: तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए,
1: क्या बात,
0: नजराना।
1: वाह वाह।
0: ये एक हमारे
1: जी
0: गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो उन,
1: नजराना
0: हाँ,
1: देते
0: एक
1: हैं,
0: नजराना
1: ये
0: देते
1: प्यार
0: हैं,
1: का प्रतीक
0: बिल्कुल,
1: है, स्नेह का प्रतीक
0: और
1: है।
0: उनको एक प्रोत्साहन देने के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला, जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा, इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है,
0: तो
1: यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी
0: बिल्कुल,
1: साहब और सुमन
0: सच में
1: कल्याणपुर के साथ
0: ये
1: और
0: आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में
0: बिल्कुल
1: आपने गाया,
0: बिल्कुल
1: तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का, तो
0: बिल्कुल
1: कैसा रहेगा।
0: बिल्कुल। और पता है, मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुलो, तारा है ना बुलबुलो, तर पापा पा बापा बुलबुलो, परारा मम्मी बोलो बोलो, तररा पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है ना।
1: क्या बात है।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमी, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा। क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब SD बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल, उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामन जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते, वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
0: जी
1: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
0: जी। बहुत सुंदर।
1: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती
0: और क्या बात है,
1: इतने क्यूटली वो हंसते थे
0: जी।
1: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है और बाल बराबर आशा काके की उन वो तो आई नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काके की रिकॉर्डिंग्स कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
0: अरे वाह,
1: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, GPCP प्रोडक्शंस
0: जी,
1: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
0: जी
1: सुमन कल्याणपुर जी, रफी

0: साहब शमी कपूर जी, सही है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया,
1: जी
0: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
1: हाँ,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार
1: प्यार
0: के
1: की चर्चे
0: चर्चे।
1: हर
0: और
1: जुबान पर।
0: यही पूरा था ना, जीपी
1: हाँ
0: सिप्पी प्रोडक्शंस,
1: हाँ
0: शमी कपूर जी, शंकर जय किशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याणपुर जी,
1: जी
0: वही पूरा देखे खेला।
1: बिल्कुल।
0: मुझे नहीं पता था तब
1: हाँ
0: कि कुछ साल बाद मैं इसी इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी
1: अभिनेता बनेंगे।
0: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब, पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
1: जी जी
0: देखिए,
1: जी
0: ये वक्त का खेला है,
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि
0: तो वो
1: वक्त
0: एक
1: ही है
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल
1: हमारी पहचान बनाता है
0: उसके
1: या
0: आगे
1: हमारी
0: कुछ नहीं,
1: पहचान मिटा देता है।
0: एकदम।
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त.
1: बिल्कुल.
0: थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी. और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा. अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था. मसलन शंकर जयकिशन में आप बता ही रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ, सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बप्पी लाहिड़ी, रविन्द्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप.
1: बिल्कुल बिल्कुल. चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए.
0: अच्छा.
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते
0: जी. और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए.
1: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
0: जी.
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता है आपको, एक फिल्म आई थी औलाद.
0: जी.
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी, शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था.
0: लाडला.
1: उसमें निरुपर रॉय जी थी शायद. एक गाना था उसका,

0: रे, ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है
1: जी
0: अगर मैं गलत नहीं हूं,
1: जी बिल्कुल
0: करेक्ट।
1: बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना
1: गाना
0: गाया।
1: गाया।
0: देखिए आप देख रही हैं मैं,
1: समय खुद को
0: हाँ
1: दोहराता है किस
0: देखिए,
1: रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक
1: बिल्कुल
0: बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत

0: ये वक्त का खेला
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: होता
1: कहा,
0: है
1: और ये आपसे
0: जी।
1: बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त
0: बिल्कुल,
1: आपको किस तरह से कहाँ
0: कैसे
1: कहाँ
0: देखिए,
1: जोड़ता
0: है
1: है।
0: ना।
1: बिल्कुल,
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज,
4: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, भी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
0: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
1: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में, इतिहास में जाने वाले हैं।
1: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
0: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
1: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमयी अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
0: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी। और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
1: अच्छा
0: जी,
1: महाराष्ट्र
0: आपका,
1: से थी?
0: जी हाँ, आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में, जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है, वहाँ उनके पिता रहा करते थे।
1: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत जी, कि दुर्गा

0: खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने की बहुत ही अजीमुशान शाहकार, जिसे कहते हैं ना
1: जी
0: पृथ्वी वल्लभ, उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया था। वैसे तो दुर्गा खोटे जी हमें याद आती हैं सलीम की माँ के रूप में।
1: जी जो धवाई का अभिनय उन्होंने फिल्म मुगले आजम में किया
0: जी
1: था।
0: हाँ, लेकिन पृथ्वी वल्लभ इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें वो साज सिंगार कर रही
1: जी
0: हैं। तो इस गीत को सुनाते हैं, उसके बाद हम दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के।
1: क्या बात,
0: फिल्म
1: है?
0: का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दें श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा, यानी अयोध्या का राजा। और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण

0: स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है,
1: जी।
0: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय से हम चुनकर लाए हैं।
1: अवश्य। और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था।
2: जी, तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलायत खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल।
2: जी।
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले।
2: जी।
3: असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं। मैं आपको
2: उसमें झगड़ेलू सास का था।
3: ओफो, बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई और मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे रहकर शादी नहीं करती।
2: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
3: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम देना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए।
2: तो
3: इस हिसाब से मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
2: रसोई वगैरह का भी शौक है?
3: हाँ, मुझे बहुत शौक है, महाराष्ट्रीयन पद्धति का। और पद्धति मैं नहीं जानती लेकिन, और लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ, मालूम नहीं।
2: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
3: मुझे गाने का शौक था ही
2: जी,
3: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
2: अच्छा, विदेश भी गई
3: हूँ? हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआ, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
2: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी जरूर?
3: हाँ, मैं काफी लोगों से मिली।
2: अच्छा, तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज्यादा तरक्की पर है भारत की नस्बत?
3: हाँ, ये जरूर है कि वो हमसे आगे बढ़े हैं, हालांकि टेक्निकली मैं समझती हूँ कि उनको काफी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का।
2: जी, जी।
3: एक्सपेरिमेंट से लोग तो बढ़ ही जाते हैं आगे, हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता।
2: अच्छा, अभिनय की दृष्टि से?
3: अभिनय की दृष्टि से मेरा ख्याल है हमारे यहाँ वाकई बहुत अच्छे और बहुत इंस्टिंक्टिवली जो लोग हैं आर्टिस्ट, वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा आर्टिस्टिक है। एक तो हम ज्यादा सेंटिमेंटल भी लोग हैं, भावना प्रधान हम लोग हैं, और वो भावना हम कभी दबा क्यों नहीं रखते, बताते हैं।
2: अच्छा, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जिसको आपको याद करके हंसी आ जाती है अभी?
3: मुझे तो अभी भी उस बात की हंसी आती है जब मैंने पहले भवनानी साहब के पिक्चर में काम किया था।
2: जी।
3: तो मैंने समझा न जाने मैंने कौन सा बड़ा काम किया, और बड़े शौक से उम्मीद से मैं वो पिक्चर देखने गई।
2: जी।
3: जब देखा वो इतना भयानक था कि मैं वाकई बहुत डर गई। न मैंने मेकअप किया था, न मैंने कुछ इसके बारे में सोचा था। जिस उम्मीद से मैं गई थी और जो मैंने देखा, उसकी जब याद मैं करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वाकई लोग अपने आप को क्या समझते हैं, जब देखते हैं तो क्या देखते हैं। काश के लोग अपने आप को ऐसे देख सके।
2: अच्छा दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी।
3: नहीं शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चंद लफ्ज कह सकी। नमस्ते।
0: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने। ये हमारी एक खास धरोहर है, और अब आगे बढ़ें हमारी बातचीत में हमने इप्टा की बात की थी, जब हम दुर्गा खोटे जी को याद

0: रहे थे।
1: जी हाँ,
0: इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं। उनके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन उस
1: जी,
0: कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं।
1: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और
0: जी
1: सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से।
0: जी
1: और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया।
0: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक।
1: जी हाँ, और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे
0: जी,
1: और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए।
0: क्या बात है।
1: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला।
0: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में
1: जी हाँ,
0: जिंदा हैं।
1: और
0: शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो
1: हाँ,
0: दिखते
1: और
0: हैं।
1: रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता, और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं। और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब है या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो
0: जी,
1: उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला।
0: तो सत्येन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं, और इनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सत्येन कप्पू जी को।
2: मेरा यानी सत्येन कप्पू का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूँ जिन लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली है और जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिराक गोरुपुरी साहब की। लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बे आग भी जल जाते हैं जलने वाले। ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया, और जब बंबई आया तो यहां मैंने श्री बल्लाज साहनी की फिल्म देखी, धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमल रॉय जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं, कुछ तो निशानी छोड़ जा।

बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए, जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था, जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है, और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर की जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है, और मैंने वो किरदार वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो, और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया। और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा, जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली भी मुझे परेशानी हुई।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपनी एक फिल्म की। फिल्म का नाम था कुली, मनमोहन देसाई जी उसके डायरेक्टर थे। तो एक सीन आता है कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गांव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूँ। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बताने लगे, भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थार से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया, मैं बाहर आया। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। अब यकीन मानिए मेरे पांव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है।

एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था 2 या 3 महीने से, और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता, कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर, मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ, और हमने शो किया। और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

2,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3,000 तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगा। तो फौरन बोले कि भाई 3 रुपए तुमने लिए थे आज से 15 साल पहले, अब तक नहीं चुकाए। ये 3,000 रुपए तो शायद तुम्हें सात जन्म भी नहीं चुका पाओगे। वो कलाकार, वो महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो उन्हीं की याद में मैं आपको उन्हीं की पिक्चर खिलौना का गीत सुनाता हूँ।

0: सतीन कप्पू जी की आवाज हमने सुने
1: जी,
0: और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
2: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ

0: अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई है।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंद किशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियसामी को दिया जाएगा उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: अदके बैतीनी नानू दोड्ड अयोग्य।
0: आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर

0: नवंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं, पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
1: सरकार को कुछ होने क्या
2: पता चल गया तुझे? वो कहाँ है?
1: नहीं मालूम कहाँ गया, माटी मिला
2: मालूम नहीं, वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है, चाहे वो रंगमंच हो, सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़ा रॉकेट कन्फर्म आयु हियर इज अ मैन हू कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತನಾಗ್ ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅನಂತನಾಗ್ ಅಂಕುರ್, ಭೂಮಿಕಾ, ಕಾಲಿಚರಣ್ ಔರ್ ಜುರ್ಮ್ ಜೈಸಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆಯೆ ಹೈ. सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
4: हंस क्यों रहे हैं?
5: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहानुल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में
4: जरा होश में आइए हुजूर, जरा हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गई। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।
6: संता

0: मैं जाऊं, बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली गल सुन।
0: क्या
1: तेरी कुड़माई हो गई?
2: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर, और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: में आयो रे संदेशवा के चल आज देशवा के ओ।
1: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
2: बात गुस्सा तो नहीं कीजिएगा,
3: बोलो।
2: बात यह है, मेले में चोर पॉकेट मार बहुत आते हैं।
3: सो तो आते हैं फिर?
2: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
3: अगर मैं मार लूँ तो?
1: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
4: हाजत हो गया।
5: जाओ।
6: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
5: खेल रहे हैं?
6: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
5: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
6: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
5: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
6: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
1: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
7: प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
1: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
8: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
1: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म

बाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए। संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: फिल्म इजाजत के लिए
1: मेरा कुछ
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता है इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब।

0: बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे। इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में, लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा, छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसे ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती, क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ, कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या

0: Ишиш. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।

0: चश्मा।
1: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई

0: ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
1: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन, ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है, हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले लें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये है विविध भारती, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज

0: पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक व्यक्ति जब संकल्पित होता है अपने देश के लिए, अपने देश की माटी के लिए, अपने लोगों के लिए, और उसके मन में भावना होती है कि ये पूरी दुनिया हमारी है, भारतीयता का जो सोच रहा है आदिकाल से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि वह उसके व्यक्तित्व में आ जाए तो फिर जीवन का आयाम बदल जाता है। और समकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिनके कई आयाम हैं। आरंभिक जीवन हो या बाद का जीवन या अब का जीवन, जीवन के हर अंतराल में एक स्पष्ट सोच, दूर दृष्टि और अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी संस्थाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करना, अपने लोगों को हर स्तर पर सक्षम बनाना, आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना, और इस क्रम में जन सेवा से देश सेवा का लक्ष्य उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में और उनके कर्म में हम पग पग पर सुदीर्घ अवधि से देखते हैं। लगभग ढाई दशक कहें, तीन दशक कहें, तीन दशक की यात्रा में नरेंद्र मोदी न केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता से एक सक्षम मुख्यमंत्री और उसके बाद भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैसे क्षमतावान सशक्त छवि निज स्वयं की और उसके साथ साथ भारतवर्ष की बदलने में सफल हुए हैं, वह मायने रखता है। इस श्रृंखला में हम विविध विषयों पर श्रोताओं चर्चा करेंगे, जिसमें उनके साथ होने से, उनके नेतृत्व से, उनके लगातार प्रयास से किस तरह से बदलाव भारतवर्ष में आए हैं। पहले गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में हमने वाइब्रेंट गुजरात को देखा, एक ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योग उतना सक्षम नहीं था जितना कि होना चाहिए था, वह बदलते हमने देखा और भारतवर्ष को बदलते हुए देखा है। आज इस अंक में हमने अपने अपने क्षेत्र के जाने माने नाम, राजनीतिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी को आमंत्रित किया है। हम विविध विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद मनोज जी।
1: शुभमय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: देश के उत्थान में समाज के सबसे गरीब वर्ग का योगदान जब तक सुनिश्चित नहीं होता, उन्हें ऊपर उठाने के लिए आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत बनाने के लिए सही उपाय नहीं किए जाते, तब तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रगति के पथ पर वो आगे नहीं बढ़ पाते उसी गति से जैसे बाकी लोग। अंत्योदय वर्ग के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका संक्षिप्त लेखा जोखा हम आपको बताते हैं।
4: पिछले वर्षों में सरकार की अनेक पहलों में इस बात पर जोर दिखाई देता है कि विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित न रहे जो पहले से ही मुख्यधारा से जुड़े हैं, बल्कि उन परिवारों और क्षेत्रों तक भी पहुंचे जो लंबे समय से विकास की सुविधाओं से दूर रहे हैं। वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल और सड़क जैसी जरूरतों से जोड़कर समग्र रूप देने पर जोर दिया।

0: आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत 112 पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रगति को लगातार मापा गया। यानी किसी क्षेत्र को केवल पिछड़ा मानकर छोड़ने के बजाय उसके विकास की कमियों की पहचान कर उन पर लगातार काम करने की व्यवस्था बनाई गई। इसी क्रम में दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ध्यान बढ़ा। वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के जरिए सीमा से लगे गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, आजीविका और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मकसद यही कि देश का कोई गांव केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विकास की मुख्य धारा से दूर न रह जाए। आदिवासी समुदायों के लिए ये प्रयास और लक्षित हुआ। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। जून 2026 तक इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच के लिए 831 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स संचालित की जा चुकी थी। अंत्योदय का मतलब केवल भौगोलिक या सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए ये भी जरूरी है कि उसे सरकारी सहायता पाने के लिए व्यवस्था के चक्कर न लगाना पड़े। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT ने सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया। जब बात जीवन की बुनियादी सुरक्षा की आती है तो स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। जून 2026 तक योजना के तहत 12 करोड़ 69 लाख से अधिक अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी जा चुकी थी। इन सभी अलग अलग योजनाओं के पीछे एक साझा सोच है, विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही अंत्योदय की भावना है जिसमें कोई परिवार, समुदाय या क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे ना छूटे। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: सबसे पहले तो केवी हम आपसे समझना चाहेंगे कि देश में गरीबों की संख्या, भारतवर्ष के लिए कहा जाता है किसानों का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गरीबी हमने गांव में भी देखी, शहरों में भी देखा, और विशेष रूप से जो हमारे जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी देखा। तो यदि हम दो को समझना चाहें तो गरीब कल्याण मेला और वन बंधु कल्याण योजना, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री के रूप में हो या बाद के दशक में कह लें प्रधानमंत्री के रूप में हो, तो किस रूप में एक परिवर्तन जमीनी स्तर पर हमने देखा है।
2: भारत का जो मूलभूत जो हमारी परिकल्पना रही है वो है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है
1: जी।
2: और अगर हम शुरुआत से देखें, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जब तक अंतिम छोर में खड़ा हुआ इंसान, जब तक हम उसकी आंसू ना पहुंच पाए, तब तक भारत का जो विकास जो होगा, जो भी यात्रा है, वो पूर्ण नहीं होगा। तो पिछले 10-12 साल से जिस कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस तरफ काफी अग्रसर हुए हैं और काफी तेजी से काम हो रहे हैं, और अलग अलग योजनाओं के तहत और जिस विशेष बात रखी जनमन या इस तरह जो जन कल्याण, उसमें हमारे जो जनजाति लोग हैं वो करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास हमारे पूरे उसमें है, और लेकिन ये काफी पिछड़ रहे थे क्योंकि काफी सारी सुविधाएं वहां पे नहीं है। इसके पीछे दो बड़े आयाम हमने तय किए हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक जो है अंतर्राष्ट्रीय एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक लक्ष्य हमने साधा है अन्य राष्ट्रों के साथ, उसकी और हमारे 17 योजनाएं हैं, तो उसमें कई सारी योजनाएं सम्मिलित होती हैं, और वो जब अब 2030 में वक्त ही कितना बचा है।
1: बिल्कुल।
2: दूसरा एक और ये है कि हम 2047 को अपने आप को विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: अब 20 साल उसके रह गए। विकसित भारत को उस समस्या का समाधान करना है तो आपको हर बिंदु पे फोकस करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो उसमें ये एक अहम बिंदु है जिसमें आपके सेहत है, चाहे वहां की पढ़ाई लिखाई हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ग्रामीण जीवन बेहतर स्तर में हो, स्वास्थ्य का तो हम बात कर ही हैं, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये भी पड़ता है कि उनके किस तरह से वो अपने आप को कमाई का साधन है
1: जी
2: उसको कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है जब आर्थिक विकास होगा तो अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो ये एक समग्र सोच है मेरा ऐसा मानना।
1: शुभमय, आपसे हम समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से जो विशेष रूप से योजनाएं चलाई गई हैं खासतौर से गरीबों के लिए, और उसके अलावा जो वनवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उसमें किस तरह का गुणात्मक परिवर्तन आप देखते हैं? आर्थिक रूप से कितने सक्षम हुए हैं हमारे गांव के लोग, उसके अलावा शहरी लोग भी जो पिछड़े

0: वर्ग यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, उसके अलावा विशेष रूप से और यदि हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करें तो देश का जो बड़ा एक क्षेत्र है जो जंगलों में बसता है उनके कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई तो आर्थिक रूप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया?
1: सबसे बड़ा इन सारी योजनाओं में जो बदलाव आया है वो ये है कि पहले हम बहुत सारी योजनाओं की बात किए हैं, उनको लागू भी किए हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाएं एक पायलट यानी कि सीमित जगह पे ही लागू होकर रह गया है। ये अंततः मैं करीब 50 के करीब ऐसी योजना बता सकता हूँ जो शुरू हुआ, पायलट स्कीम हुआ, उसके बाद वो उसका नामो निशान नहीं रहा, वो अंतराल में चला गया। यहाँ पर जो योजनाएं लागू किए गए हैं उसमें दो बदलाव लाया गया, बेसिक बदलाव। एक हर योजना में आप सोचेंगे एक नाम दिया जाता है पीएम योजना, पीएम उदय, पीएम उज्ज्वला। इससे एक फायदा जो एक बेसिक चेंज जो आ गया वो ये कि डिपार्टमेंट्स के लिए इन योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं कि भाई योजना चल रहा है, योजना है, योजना में थोड़े बहुत पैसे आवंटित किए गए हैं, अगले साल अगला चीज सोचेंगे, ये इसका स्पेस नहीं रहा। योजनाओं के ऊपर पूरी तरह से उनको प्रेशर, उनको जिसे कहते हैं कार्यान्वित करने का एक प्रेशर आ गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, यानी कि ओनरशिप, योजना किसका है, किसने चलाई है, किसके लिए आप कहेंगे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले कि पीएम किसान योजना, पीएम जलधारा, ये सारी स्कीम में ये जो मॉनिटर आया है ये बहुत बड़ा एक बदलाव है कि डिपार्टमेंट्स के लिए इनको कई सारी योजनाओं में शामिल कर देना कि बस वही है योजना, वो उसका स्केल स्कोप नहीं था। और इसी के चलते 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए, वो है कि एक्सपेंडिचर में जो बहुत सारी योजनाएं जो थे पुरानी योजनाएं उनको खत्म कर दिया गया, एक सनसेट पीरियड लाया गया और नई योजना का क्रियान्वयन उस स्टेप से किया गया कि अभी हम इन सभी योजनाओं में छोटे छोटे छोटे जो पैसे लगाए जाते थे जिसमें जैसे मैंने कहा कि खास कुछ उसका कुछ देखभाल नहीं होता था, उनको एक बड़ा शक्ति के हिसाब से उन योजनाओं को सामने लाया गया। तो इससे योजना का अपने आप में, योजना का गुणवत्ता, योजना का को लेवल, सब कुछ में बदलाव आ गया, बहुत बड़ी चीज है ये
0: जी।
1: दूसरी बात इसमें जो बदलाव लाया गया वो ये है कि योजनाओं में जब बदलाव आया गया खर्चा में, नेचुरली इसका खर्चा का जो लेवल है और एप्लीकेशन जो है वो पूरे देश का हो गया, ये सिर्फ राजस्थान का या तमिलनाडु का या असम का या कश्मीर का या उड़ीसा का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चेंज है, तो लोगों को समझने में और इसको क्रियान्वयन करने में बहुत ईजी हो गया। सिंपल योजनाएं लेकिन उसके डायरेक्शन क्लियर है, उनके टारगेट क्या है वो पता है और उस पर कितने खर्च किए जाएंगे वो क्लियर है। तो कुल मिलाकर योजनाएं अपने आप में एक सशक्त डिलीवरी मॉडल्स बन के हमारे सामने आ गए
0: जी। बहुत अच्छी बात की शुभमय कि योजना एक मॉडल के रूप में, एक ऐसे मॉडल में जो जमीन पर उतरता हुआ साफ साफ दिखता है। यहाँ पर केवी आपसे हम समझना चाहेंगे कि जमीन पर जो ये योजनाएं उतरने लगे, यदि हम थोड़ा सा पीछे से चर्चा करें तो प्रधानमंत्री का एक सपना था जिसमें कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली सक्षम हो, हर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के पास एक खाता हो, यानी जाम ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं, जनधन योजना के अंतर्गत उनके पास एक बैंक का खाता हो, उनके पास एक मोबाइल हो। इस योजना ने, यानी शुभ मैंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि यह योजना किसके लिए है, यह स्पष्ट हुआ, इसकी मॉनिटरिंग बढ़ी और मॉनिटरिंग के साथ साथ वो डिलीवरी प्रोडक्ट के रूप में किस रूप में समाज को फायदा पहुंचा रहा, यानी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। उस जिम्मेदारी में एक लीकेज रोकने में जो जाम ट्रिनिटी है उसने किस रूप में परिवर्तन लाया और अपने आरंभ काल से अब तक यह कैसा रूप लेती दिखाई दे रही है आपको?
2: मनोज जी, इसमें दो चीज स्पष्ट है कि सबसे पहली बात है कि सरकार ने ये एहसास तो था ही कि भाई पैसा जो भारत सरकार पहुंचा रही आवंटियों को पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ जैसे आपने कहा, तो उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि पहले तो होता है कि पैसा आप कैश में देंगे, रोकड़ में देंगे
0: जी जी, जी।
2: तो कहीं किसी के हाथ जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसके तहत ही नीचे जाएगा
0: जी।
2: तो उसमें कई सारे व्यवधान आते थे इस तरह के। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आ गई, इस तरह की विकसित तकनीक है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जिसकी आपने बात की जनधन हुआ, चाहे जैम जिसे कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल, तीनों को जोड़ के आपने तो एक मजबूत ढांचा आपने तैयार कर रखा है आपके पास। और उसमें सबसे बहुत मुझे याद है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट करेंगे अगर आप कभी भी देखें, जो सरकारी जितने बैंक थे उनको ये कहा गया कि आप नए खाते खोले जीरो बैलेंस के
0: जी,
2: जो आम नागरिक हैं और सबको उनको एनकरेज किया गया आप जाके अपना एक बैंक का खाता खोलिए और उसी खाते में पैसा जाता है
0: जी, जी।
2: और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जब कोविड की महामारी परेशान कर रही थी, हमारे यहाँ भी आर्थिक समस्या बढ़ गई थी, तो सरकार जो पैसा हस्तांतरण कर रही थी वो इसके जरिए कर रही थी कि सीधा सीधा लाभार्थी के खाते में चला जाए पैसा। तो इस तरह से जिसे कहते हैं, इसका एक और फायदा है, अब उसके बाद अब तो हाल फिलहाल की बात है, हमें यूपीआई क्यूआर कोड का जो

0: इस्तेमाल होने लगा भीम ऐप के जरिए तमाम सारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए।
1: जी
0: शुरुआत में इसके बल काफी आलोचना भी हुई, आपको याद होगा।
1: अच्छी
0: अच्छा आलोचना ये हुई थी कि भाई इस जहां पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो फिर उनको नहीं आता।
1: जी
0: लेकिन आज तो आम बात है कि चाहे आप छोटे से छोटे व्यापारी हो, छोटा से छोटा ठेले पे जो सामान बेचता है उसके पास QR कोड है।
1: जी
0: इसका एक बहुत बड़ा दूसरा फायदा है जो मेरे ख्याल से आप शुभ हुए, जो कि आर्थिक विशेष ज्यादा काम करें, भारत एक डिजिटाइज्ड इकोनॉमी होता जा रहा है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आपको बकायदा पता लगेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में UPI को लेकर कुछ चर्चाएं चली हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट आंकड़ा है अब।
1: जी
0: पहले कुछ नहीं था कि रोकड़ में कैश में व्यवधान हो रहा है कि क्या वितरण हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं होता था।
1: जी
0: तो ये भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में बढ़ रही है वो सब भारत सरकार और हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: क्या शुभ, मैं अब अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, DBT किस रूप में गेम चेंजर साबित हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था को? यानी काला धन सफेद धन, धन धन है, लेकिन धन जो डिजिटल माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में जा रहा और जो लीकेज एक बड़ी समस्या थी, लाभार्थियों तक उचित तरीके से वह धन नहीं पहुंच पाता था, उसमें DBT कैसे कहले पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम हुआ? और एक बड़ी अच्छी बात केवी जी ने कही कि जिस रूप में अब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वह बताते हैं कि हम तकनीकी रूप से डिजिटल भारत की ओर तेज गति से बढ़ रहे हैं। किस तरह आकलन कर रहे हैं आप?
2: बिल्कुल, ये जो आकलन की बात है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके ऊपर अगर आप कई साल का लेखा जोखा देखें CAG का, तो पहले क्या हो रहा था कि जो स्कीम्स थे इन सारी स्कीम्स में आकलन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि स्कीम्स किस तरीके से कितने अमाउंट पे गया है। हर साल का CAG का जो लेखा जोखा था उसमें यही चीज बार बार आता था कि खर्च तो हुए हैं लेकिन खर्च सही जगह पे नहीं हुए हैं और सही मात्रा में नहीं हुए हैं और सही लोगों को नहीं मिले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको भी आप एक ट्रिनिटी कह सकते हैं, बड़ा नेगेटिव ट्रिनिटी, और वो ट्रिनिटी जो हमें काफी परेशान कर रहा था वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा सके हैं। अभी आप जैसे कोई भी लाभार्थी किसी भी स्कीम में जाते हैं तो उनको पता रहता है कि उनको कितना मिलना है, उनको बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में उनको दिख जाता है कि वो अमाउंट आया या नहीं, और तीसरा जो बीच में मिडलमैन बिचौलिया जो खा जाते थे उसका मात्रा काफी कम हो गया है। और इसकी वजह से जो आप देख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि गांव में बहुत सारे पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जो कंजम्पशन में जो एक जंप आया है और जिस पर अर्थशास्त्री लोगों ने बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन भी किए हैं, वो फर्क इसीलिए आया है कि अभी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा 2200 से 2500 डॉलर्स के करीब हम मानते हैं जिसमें हम चलते हैं, इससे बढ़कर इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगा, 7 ट्रिलियन हो जाएगा और उस जिसमें ज्यादा देर नहीं है, तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम लोगों का डबल हो जाता है। अब हमारे लेवल में आपके लेवल में पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना वगैरह वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि पर्सन का जिसका मान लीजिए औसतन 80,000 रुपए इनकम है वो अगर बढ़ के 160 हो जाए उनकी पूरी जिंदगी का माहौल बदल जाता है। सो ये जो जैसे कहते हैं एक मूलभूत परिवर्तन ये तभी पॉसिबल हुआ है जिसका वजह था ये जैम ट्रिनिटी
1: जी
2: जनधन वाली योजना। तो दैट एंटायर प्रोसेस ने लोगों में एक कॉन्फिडेंस एक एक्सपेक्टेशन और एक कंटिन्यूटी का सिस्टम बना दिया है कि ये चलेगा, इस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आएगा हर महीने में हर 15 दिन में जैसे भी उसका शेड्यूल है
1: जी
2: उस तरह से वो पे। तो कुल मिलाकर दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर जो एक बार सक्षम होने के बाद लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स की जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी इस पर भरोसा आ गया है। और ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं चेंज जो पिछले कई साल में हुआ है जो बार बार हमारे हर तरह के सर्वे में हर तरीके का एनालिसिस में ये बनकर सामने आ रहा है। जी
1: यहाँ पर भी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, शुभ में कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत मजबूत हुआ है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, बेशक आमदनी के आंकड़ों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर दुनिया में हम थोड़ा पीछे भी ठहरते हों, लेकिन लगातार पिछले 10-12 वर्षों में गरीबों के उत्थान के लिए जो विभिन्न योजनाएं चली हैं उसमें डिस्पोजेबल इनकम यानी एक गरीब व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाती है, तो वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका एक पूरा परिवार, पूरे गांव का अर्थतंत्र और उसके समान कई सारे लोगों के अर्थतंत्र की आवश्यकताएं बदलती चली जाती हैं। तो ग्रामीण भारत में जो ये जाम ट्रिनिटी थी उसने किस रूप में बदलाव लाया और कितना

0: मजबूत भारत आप देख पा रहे हैं आज की तारीख में?
1: माना जाता है कि भारत के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाके में बसते थे, ऐसा शुरुआत में थी, लेकिन वो चीज बदली है। फिर भी 40 फीसदी के आसपास मान के चलिए, 45 फीसदी के आसपास ग्रामीण इलाकों में हमारे बसे हुए हैं, रोजमर्रा अपनी जिंदगी वहीं बिताते हैं, कुछ खेती कल्याण, कुछ कुछ अपने अपने छोटे मोटे कार्य से। जो सुबह भी बात कर रहे थे और आपने भी जिक्र किया, जब सीधा पैसा आपको हर महीने या 15 दिन बाद आने लग गया
0: जी,
1: तो एक आपको पता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। और एक बहुत बड़े इसमें एक जिसे कहें डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि महिला का बीच में इसमें रखे स्कीम्स में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला के खाते में जब पैसा आता है तो वो पूरे परिवार को सोचती है, यानी कि पुरुष नहीं सोचते हैं, लेकिन माना गया एक हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म जिस तरह से देखा जाता है, तो वो एक फर्क पड़ा। और खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं शिक्षा की ओर बढ़ रही हैं, तो वो एक बदलाव, क्योंकि जो हम विकास ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बढ़ेगा, एक समाज की बदलाव भी आएगा। जब तक समाज के बीच में बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, अगर ये समाज स्वस्थ होगा विकास की ओर बढ़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह के कल्याणकारी योजना। और एक मूलभूत जो परिवर्तन ये भी देखा गया है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका एक मंत्र रहा है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच,
0: जी,
1: क्योंकि सरकार अलग अलग विभागों में काम करती है, तो एक विभाग को दूसरे से मतलब नहीं होता था, ये तो हमारा काम नहीं है, फलाने मंत्रालय का है, तो सबको लेकर सम्मिलित कर कि लक्ष्य आधा सबने कि ये करना है आपने, तो चाहे ग्रामीण में हो, तो तमाम सारी जैसे बात हो रही थी, कई सारे अलग अलग विकास की योजनाएं थी, लेकिन उसको जैसे कहते हैं टारगेट करके एक दिशा देना कि ताकि उसको कार्यान्वित भी हो और वो जो लक्ष्य को साधा है वो पूरा भी करें। और ग्रामीण भारत इसलिए बढ़ा है कि आप चाहे ऊर्जा बढ़ाए, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक स्वच्छ पानी
0: जी
1: और जो बाकी सब मूलभूत सुविधाएं, इस सब के भी काम हो रहा है। ठीक है, कास्ट का स्तर अलग अलग ग्रामीण इलाकों में अलग होगा, वो क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य को पूरा करे, लेकिन कुल मिलाकर दबाव सब पे है।
0: यहाँ पर शुभ मैं आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, गांव की बात की और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार का जो नजरिया है वह पूरा का पूरा सरकार के सभी विभाग अपने लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें, उस दिशा में काम होता हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यह कार्यक्रम गांव में किस रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसके नतीजे कैसे निकल के आते दिख रहे हैं आपको?
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक मतलब डिफिकल्ट प्रोग्राम है, लेकिन साथ में बहुत ही कारगर प्रोग्राम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि एवरी विलेज इन द बॉर्डर इज द फर्स्ट विलेज इन द कंट्री। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आई थिंक 2023 में शुरू कर गया कि देश के जो बॉर्डर इलाके में करीब 19 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर करीब 650 के करीब विलेजेस का उन्नति किया जाएगा। इसको उन्नति करने में प्रॉब्लम क्या था कि ये चूंकि एकदम बॉर्डर में है इसलिए इनकी तरफ कोई भी बेनिफिट ले जाना, जैसे लाइवलीहुड जनरेशन या एंटरप्रेन्योरशिप करना या यहां तक कि इवन स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह का भी जो व्यवस्थाएं करना वो मुश्किल था, क्योंकि ये एकदम काफी सारे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अपने आप में एक जिसे कहते महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। ये एक दूसरा रुख है सोचने का कि किस तरीके से इन तरह का इलाकों में बेनिफिट्स लाया जाए और किस तरीके से जैसे वो आप जैसे कह रहे थे कि हर तरीके का मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ में लाकर इन जगहों में किस तरीके से इंटरवेंशन किए जाए। इनफैक्ट इसका सक्सेसफुल लॉन्च के बाद ये पिछले साल इसको और भी बढ़ाया गया है कि जितने सारे ब्लॉक्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स में उन सभी ब्लॉक्स में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास में जितने सारे विलेजेस हैं
0: जी
2: वहां पे इस प्रोग्राम को लागू किया जाए
0: जी।
2: तो अपने आप में ये तो खैर मैं आकाशवाणी के जरिए लोगों को आमंत्रित करूंगा कि वो जाके देखे कि किस तरीके का बदलाव वहां पे आया है, जैसे रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीजों में किस तरीके का बदलाव आया है। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं उल्लेखनीय चीज तो है और शिक्षणीय चीज भी है जी।
0: श्रोताओ, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की ओर इशारा कर रहे हमारे विशेषज्ञ कि सीमावर्ती भारत के गांवों में जो परिवर्तन हुए हैं, बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और ये परिवर्तन न केवल दिखते हैं बल्कि इनका लाभ हमें और आपको स्पष्ट मिल रहा है। देश के कई क्षेत्र जहां जाना कठिन था अब वहां सहजता से आप पहुंच सकते हैं और वहां पर जो एक व्यवस्थागत बदलाव आया है उसके साक्षी बन सकते हैं। यानी देशी पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर जो हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित भारत अपने स्थान पर

0: लेकिन विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत की दिशा में सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई और विशेष रूप से जो आयुष्मान भारत योजना चली, पीएम जेएवाई योजना चली, यह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रही है और ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव नजर आता है इन योजनाओं का?
1: अगर स्वस्थ हो गए राष्ट्र तो वो विकास की ओर कार्यक्रम में उसके लोग रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज, एक तो भारत सरकार की जो पुरानी जो स्कीम्स थी वो तो अपने कार्यान्वयन में हुए हैं और इसी वजह से हमारे जो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है।
0: जी जी जी।
1: अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो शायद 40-43 आज 70 के ऊपर, 70-75 के आसपास, क्योंकि वो उसमें कई चीजें जुड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ समाज के सामने एक नई समस्या भी खड़ी होगी कि जैसे जैसे लोग वयस्क लोग बढ़ रहे हैं समाज में, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है वो भी, और अपने जी कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए सेवा तो की है, लेकिन अब जब उम्र अलग हो गई है और समस्याओं से घिर रहे हैं तो उनमें 2-3 कार्यक्रम लाए गए। उसके साथ साथ चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, अब उसमें अलग जो दूसरा है आभा स्कीम है, आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, तो ये सब सम्मिलित करके कर रहे हैं और 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और उसमें आप कार्ड बनवाइए 5 लाख तक परिवार में, एक आपके कोई समस्या आती है, कई सारे उसमें जो पैमाने हैं वो मापदंड है, आप वो सरकार को कोई खर्च नहीं हो, मतलब सरकार खर्च करेगी आपके बतौर आप और उनके जो उनके अस्पताल है वहां जाइए, स्वास्थ्य केंद्र है। और क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया कि चाहे वो ग्रामीण ही छोड़ दिए, कई सारे टाउन टीयर टू सिटीज भी हमारे पास स्वास्थ्य योजना तो थी लेकिन उसको कार्यान्वयन करने में समस्या आ रही थी, उसको भी इसमें कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरे जैसे पोर्टल, एक जैसे आभा की बात किया, उसमें भी आप डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए स्वास्थ्य कार्य में जो भी है, ताकि उनका एक रजिस्टर बने कि कौन कौन स्वास्थ्य कर्मी कहाँ कहाँ हैं। और दूसरी तरफ लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल माध्यम से रखें, क्योंकि हर एक के पास रिकॉर्ड रखने की समस्या है। आप अस्पताल पहुंच गया, पता चला रिपोर्ट घर पे छूट गया, तो वो भी डिजिटाइज करने, जो आभा नंबर आप ले लीजिएगा तो कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप इस एक प्रांत में और दूसरे प्रांत में कोई आपको चिकित्सक बैठा या आप कहीं चले गए तो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से जो शुरुआत में भी बात हुई, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है उसका एक सदुपयोग कर रहे हैं।
0: यहाँ पर शुभ, मैं आपसे हम समझना चाहेंगे कि यह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं शुरू हुई हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और किस रूप में यह चल रही हैं और आम लोग इसका लाभ किस तरह उठा सकते हैं, कुल मिलाकर इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया, ये तो हमारे हर चर्चा में ये हम समझना चाहते हैं आपके माध्यम से।
2: देखिए, बहुत बड़ी बदलाव जिससे इनसे आया है वो तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, जितना जिस तरीके का हम अगर हर कोई भी बिंदु अगर ले, जो कंजम्पशन इंडिकेटर है, जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उसके तरफ, एक जैसे एक फंक्शन से एक चीज आप देख सकते हैं जैसे पीएम आयुष्मान भारत
0: जी।
2: तो अभी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आयुष्मान भारत में पहले था कि ये स्कीम किसके लिए है, अब यह है कि स्कीम किसके लिए नहीं है, यानी कि ये स्कीम ऑल ओवर द प्लेस सबके लिए जरूरत बन गया है। सिमिलरली जैसे स्कीम्स की हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो गैस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हर जगह में, उस तरीके का प्रोग्राम में भी हर लोग इसका फायदा लेना अपना, जिसे कहते हैं मुस्लिम की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रोग्राम हमारे लिए है, हम इसको यूज करेंगे। तो ये स्कीम्स एक, जिसे कहते हैं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत का आइटम बन चुका है कि इसमें तो मिल जाएगा, ये वाला तो स्कीम है, इसके लिए ये स्कीम है, इसके लिए वो स्कीम है। तो इसके लिए कोई सरकारी जिसे कहते हैं फंक्शन में ही इसकी आलोचना नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कशन हर जगह पे होता है। मैं फिर से हम कहूंगा जैसे पंचायत वगैरह में इनकी जो इनके बारे में जो कमेंट्रीज होती है, इनके बारे में जो डिस्कशन होती है, वही आपको बताता है कि कितना परिवर्तन का स्रोत इन स्कीम्स ने तैयार किया है। एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है वो है जी राम जी प्रोग्राम में,
0: जी जी
2: की का स्कीम रहेगा, स्कीम को और कितना इम्प्रूव किया जाए, वो एक बहुत बड़ा सोच का केंद्र बिंदु बन गया है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ माफिस करने के फाइल्स में नहीं रहता है, बल्कि वो उठ के लोगों की आम जिंदगी के लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, उनमें समा चुका है। यही है स्कीम्स के, जिसे कहते हैं हम, सिग्नेचर, कार्यकर्ता की कार्य क्षमता, उसकी क्रियान्वयन, उसकी जो कैपेसिटी, ये हमें दिखी है इन स्कीम्स के सबसे बड़ा खूबी कि गवर्नमेंट का जो फंडिंग करने का जो सिस्टम है उसको भी उसके अनुरूप बदल दिया गया है। जो पीएफएमएस स्कीम्स है वगैरह, पीएफएमएस एक्चुअली स्कीम नहीं है, पीएफएमएस पब्लिक फंड मैनेजमेंट स्कीम, वो पूरा इन सारी स्कीम्स को किस तरीके से फंडिंग रखा जाए, लिक्विड रखा जाए, उसके लिए सरकार ने अपने अकाउंटिंग सिस्टम भी बदल दिया।

0: है, और ये सब बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, मैं कहूंगा फेज चेंज है इन द एंटायर डिलीवरी सिस्टम, जो हमें फायदा दे रहा है। जैसे अभी पिछले कई साल में कोविड हुआ या उसके बाद, ये जैसे एक के बाद एक डिस्टर्बेंस होते गए हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल के क्राइसिस वगैरह, बाकी सारे क्राइसिस में, तो भारत के ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया है। और वो इफेक्ट इसलिए नहीं आया है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड को के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये स्कीम के जरिए जो पैसा जो लोगों के पास जाना चाहिए ये जा रहा है, उसकी गति में, उस स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इसीलिए दैट आई थिंक इज अ वेरी मेजर चेंज जो हम, जिसके लिए वी कैन बी वेरी वेरी प्राउड।
1: जी, यहाँ पर के भी हम ये समझना चाहेंगे कि विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, और अभी 2026 के लगभग कह लें कि अंतिम चरण में, यानी अगले 3 महीने रह रहे, तो वहां उस दिशा में जाने के लिए हमारे पास समकाल में कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं, जिस पर कि हमें काम करना चाहिए, मिलकर सरकार को ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से, ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे समस्या जो भी कहिए, चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जब आप विकसित भारत की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील से हम विकसित हो जाएं।
1: जी,
2: तो उसके मापदंड और पैमाने अलग हो जाते हैं। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनना है और उसके लिए अग्रसर है। एक लक्ष्य साधा है 2047 तक, जो 100 साल भारत का आजादी के हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है, हर एक का मापदंड अलग होता है, लेकिन एक समाज को, एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए कुछ मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब मानते हैं। तो उसमें मूलभूत तो है ही, स्वास्थ्य हो गया, पढ़ाई हो गई, सर के ऊपर छत हो गया, इस तरह की छोटी, ये तो शुरुआत से, तो जिसे हम रोटी कपड़ा मकान कह लीजिएगा, पुरानी बात है। लेकिन उसके आगे और कई सारी चीजें आ गई। आज समस्या क्या है, पर्यावरण भी जुड़ गया इसमें, क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने सेटअप किया है कि विकास तो करिए लेकिन आपने पर्यावरण का भी ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज की ओर रखिए, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में जो हमारे समाज है उसमें जो सोच है वो कैसे विकसित हो, क्योंकि कई समस्याएं हैं अभी भी समाज के अंदर। वो सामाजिक सोच, और क्या हमारे यहाँ इक्वालिटी जो कहते हैं वो तो है, इक्विटी है, जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, मतलब जो हर किस्म के लोगों के तरफ आपका किस, तो कई सारे चीजें हैं। तो वो विकास, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कई सारे है, जब तक आप हर बिंदु पे काम नहीं करेंगे तो वो जिसे है कि लास्ट में, जैसे अगर कहें, अगर हम रेस देखते हैं 8 लेन से अलग अलग लोग चलते हैं, लेकिन अंत में जाके सब उस टेप को
1: जी
2: चाहते हैं, तो वो लक्ष्य के लिए आपके कई सारे लेन्स में काम कर रहे हैं हम। चाहे आपने शुरुआत में हमने कहा जनजाति लोगों के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं, जो बात हुई थी ग्रामीण इलाकों में जो कि सरहद पे है उसके लिए, जो है जो सोच बदलने की बात आई थी, जिसके बाद सुबह कर रहे थे कि सोच क्या थी कि वो अंतिम छोर पे नहीं है, वो पहले है।
1: जी जी, जी
2: सिर्फ सोच ही बदलाव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये सोच बदलाव एक कठिनाई होती है, लेकिन जब उस तरफ आप ध्यान देते हैं तो, जैसे कहते हैं, चुनौती है, लेकिन सरकार चुनौती जानती है और उसकी तरफ काम कर रही है। जैसे मैंने कहा, अलग अलग बिंदुओं पे काम करिए, तभी तो जाके आप उस छोर पे पहुंचे।
1: बिल्कुल। शुभम, प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में सुदीर्घ अवधि से कहते आ रहे हैं कि हमें आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और उनका ये कथन कई अवसरों पर हमने देखा है। तेल के दाम बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ अपेक्षाकृत दुनिया के कई अन्य देशों में जितना प्रभाव पड़ा उतना हम प्रभावित होते नहीं दिख रहे हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं तो कोविड के समय में जो स्थितियां दुनिया के बाकी देशों में हुई, हम बेहतर थे, दुनिया को हमने दिया, यानी हम पर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ का भी बहुत अधिक प्रभाव होता नजर नहीं आया, क्योंकि हम बड़ी विविधता से, चतुराई पूर्वक, समय से कदम उठाते रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। यहां हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन किस रूप में आगे जाते आपको दिख रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो नीतियां बन रही हैं वो इम्प्लीमेंट हों और वो साल दर साल इम्प्लीमेंट होते रहे, उसके साथ साथ और क्या बदलाव आप देख रहे हैं?
2: मनोज जी, आपने जो बात कही है बहुत अहम भी है, और इस पे देखिए, जैसे इससे पहले वाकई बात कही, सोच बदलने की बात है। और ये इसलिए कि सरकार में जैसे था कि साइलोज में काम करते, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय का, हर आदमी अपने मंत्रालय को देखता था, एक तो उसको खत्म किया कि सब मिलके करेंगे, सबके जो धन है आवंटन तो सबके अलग अलग धन होते हैं, लेकिन जब एक योजना बनती है, मैं छोटा सा अगर आपको एक यहाँ पे उदाहरण दें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, अब सिर्फ घर नहीं मिलता, मतलब ये है कि ढांचा दे दिया, उसमें पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, पाइप गैस की सुविधा, 3-4 चीजें जो कि जब आप घर के अंदर प्रवेश करें, और वो घर किस नाम पर जाएगा, महिला के नाम पर होगा उसका रजिस्ट्रेशन, घर की महिला, तो एक उनको एम्पावर किया आपने। अब ये अलग अलग स्कीम से निकल के आ रहे हैं, पाइप गैस का अलग स्कीम जो सरकार के आवंटन है, पानी हर घर जल योजना, अलग अलग जो स्कीम्स बनी है उसी में से निकल के आ रहे, लेकिन जब आपने आवंटन कर दिया तो आप रह सकते। तो एक ही सोच बदली कि भाई कार्य करें।
1: श्रोताओं, एक होलिस्टिक बदलाव यानी जो परिवर्तन हुआ है वह संपूर्ण

0: पूर्णता में बदला है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे केवी प्रसाद जी ने दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब एक ढांचा घर नहीं, बल्कि उस घर में जब वो तैयार होता है तो आपको नल जल भी मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था भी मिल रही है, साथ साथ रसोई के लिए गैस का भी इंतजाम आपको हो रहा है, और सभी योजनाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एक जगह समन्वित होकर एकीकृत होकर देश के सबसे पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों को अंत्योदय योजना के तहत मिल रहे हैं, ये जमीन पर दिख रहा है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं की ओर से शुभमय आपको और केवी जी आपको हम धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद मनोज जी।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के तीसरे संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा अंत्योदय का संकल्प। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटिया जवाईसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम में एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुरीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था और यही तो बात है, विविध भारती मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे है।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर विविध भारती से।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीतमय सफर के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है।

हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ, और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत

में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे। और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत आपने सुना शर्मीली फिल्म से, नीरज ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फर्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं, और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर ये परत आंखों की सतह पर फैलती रहती है।

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
4: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।

0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
1: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
3: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
2: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
6: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों

0: और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद कर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन

0: हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा, शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज, और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

जब इश्क किया तब सोचा नहीं, हाँ जब इश्क किया तब सोचा नहीं, इस इश्क में क्या क्या होता है,

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज में गीता भी आप सुन रहे थे साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से। शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मन चाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

जानी दुश्मन इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वी बैन ने। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल ने। ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर, सत्यम सिंह, अंशराज एवं उनका समस्त परिवार। संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी इशिका फागुराम यादव ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी, और साथ ही आनंद।

मन्नाडे की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छे गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वाघे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था। और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा, प्रतीक ने इसी गीत की और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मूलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
2: अवंतिके, ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
3: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती,
3: देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
2: हाँ चेटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंतिके?
3: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
3: नहीं, और न तोड़ो। क्यों रोकती है?
2: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे, तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
3: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
2: नहीं जानती अवंतिके, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
3: क्या?
2: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंतिके, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
3: उससे भी बढ़कर।
2: तुमने कैसे जाना?
3: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासव दत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
2: हाँ संभव है।
4: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
2: मैंने कहा था जेटी।
3: फिर क्या कहा उन्होंने?
2: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
3: ओह,
2: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
3: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा।
5: गिरे हुए बंधुजीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं उधर चले श्रीमान वत्सराज।
6: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
5: देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
4: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
2: हाँ, वही तो है चेटी। अवंतिकी, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
4: आओ यही करें राजकुमारी।
5: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
6: कैसे जाना वसंतक?
5: अरे इस शेफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
6: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
5: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरत काल की ये तीखी धूप

0: बड़ी आशाएं है प्रभु।
1: क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
0: अच्छा चलो।
2: अरे ये वसंतक मुहूर्त हमें सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी। कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसे ही करो।
1: अरे बचाओ बचाओ, इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
3: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
1: जी
2: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
4: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्यपुत्र बैठे हैं।
5: आर्यपुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
2: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
5: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।
1: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूँ।
3: पूछो वसंतक।
1: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
3: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
1: मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
3: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
1: मेरे लिए तो दोनों समान है प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक कहाँ है।
3: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
1: अब देवी वासवदत्ता कहाँ है, वे तो कभी की परलोक सिधार।
3: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक, तुम मेरी दशा नहीं जानते, वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता, उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
1: अरे अरे आपका मुख आंसुओं से भीग गया, चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
4: अवंती के आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो यही समय है, हम यहां से निकल चलें।
5: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं, आप यहीं ठहरे, मैं ही यहां से चली जाती हूँ।
2: हाँ यही उचित है, देवी पद्मावती हमारे के पास चले।
4: सचमुच जाऊं?
5: हाँ जाओ पद्मावती जाओ, वे दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दो।
4: आर्य की जय हो।
3: पद्मावती बैठो, जल्दी आए वसंतक।
1: जी
3: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
4: अथवा किसी दुख से?
3: नहीं पद्मावती नहीं।
1: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
3: ठीक कहा वसंतक, आओ चले।
6: मधुरिके, ओ मधुरिके जल्दी इधर आ।
4: आई
2: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है, तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
4: राजकुमारी कहाँ है?
2: उद्यान वाले समुद्र गृह में।
6: मैं आर्य वसंतक को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ही संदेश दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजन शीघ्रता करें, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र ग्रह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र ग्रह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां सैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें?
2: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव शैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासव दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता, वासव दत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
2: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासव दत्ता,
3: ये तो

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणी पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुम्णवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राज दल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणी को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था,

0: घोषवती का स्वर? ये तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहें ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया लेकिन वासव दत्ता।

0: आप सोचें इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे।
1: ओह विजया, जा निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
0: जाती हूँ आर्य।
2: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ्य गोत्र कंचुकी और महारानी वासवदत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
3: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
2: जो आज्ञा प्रभु।
0: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
3: हाँ, वासवदत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
0: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
3: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
2: कंचुकी और धाय द्वार पर खड़े हैं महाराज।
3: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
4: आर्य पुत्र की जय हो।
0: आर्य पुत्र की जय हो।
3: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
5: सकुशल हैं और आप सबके कुशलार्थी हैं।
3: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
5: महाराज उदयन, शत्रु द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
3: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासवदत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
0: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
3: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासवदत्ता बस वो ही नहीं है।
0: राजन संताप न करें।
5: स्वामी धैर्य धरे, महासैन कन्या वासवदत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
3: वासवदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
0: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है वासवदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासवदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासवदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासवदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हो।
3: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
0: आर्य पुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
2: ये देखिए पद्मावती जी।
0: अरे
3: देवी, क्या बात है?
0: आर्य पुत्र, आश्चर्य, देवी वासवदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
3: यहाँ?
0: हाँ आर्य पुत्र।
3: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
0: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
3: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप स्वामी मिल ही जाता है।
2: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
3: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
0: संभव है वही हो।
3: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
2: जो आज्ञा प्रभु।
3: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
0: जी।
6: जय हो, आपकी जय हो।
3: ये स्वर परिचित।

0: ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
1: हाँ राजन।
0: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
2: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
0: धरोहर लौटा दो पद्मावती। वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
2: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
0: मेरे प्रिया वासुदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती आप वासुदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
1: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य है। इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
0: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
1: स्वामी की जय।
0: महामात्य।
2: आर्य पुत्र की जय।
0: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महामात्य यौगंधरायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
3: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
0: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम दूतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है। आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
4: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
0: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
3: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
0: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
3: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
0: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
3: हाँ राजन, सभी जानते थे।
0: ओ
3: महाराज उदयन, रैभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
0: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासव दत्ता भी होंगी।
3: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा स्वप्न।

ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
5: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
5: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो, यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
5: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
5: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
5: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
5: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी, हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
0: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया।
5: हाँ,
0: और दौलत को ठुकराया।
5: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए? क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
0: अच्छा, ये लखनऊ की बात
5: है। ये लखनऊ की बात है, और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब
0: जी,
5: आपने नाम शायद सुना होगा
0: जी।
5: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था जो हमारे जैसे डैडी, मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज मुझ में भी आई, और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था
0: बाबा।
5: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे
0: जी,
5: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी, बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उस दिन डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
0: एक झटके में हवेली से बाहर,
5: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद 1.5-2 महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं, बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
0: अच्छा
5: जी,
0: क्या बात है।
5: मेरा

0: पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया है, फिर उन्होंने तबला सिखाया,
1: जी जी
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया,
1: जी
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा।
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा, मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
0: और
1: कौन
0: इस
1: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान?
0: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम लोग,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे?
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे? डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, ये मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको
0: लेकिन
1: करते हुए।
0: हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा है। हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर, तो जी वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे पहुंच गए।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे,
0: जी
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहां रायपुर फिर अहमदाबाद।
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था,
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे। हम लोग
0: जनवरी में,
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बंबई छोड़ के चले गए।
1: नहीं, घर में छोड़ के चले गए।
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे।
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके,

0: तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता है? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला तो वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
1: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
0: 12।
1: 12 वर्ष। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
0: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं।
1: पहले नाम
0: डैडी
1: बता
0: के
1: दें।
0: हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह।
1: जी,
0: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी। उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
1: जी
0: हिंदी में।
1: जी
0: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
1: अच्छा
0: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर।
1: जी,
0: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से,
1: अच्छा
0: आज जो पाकिस्तान में है,
1: हाँ
0: और मदर थी कुजरावाला से। तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे। तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे, 46
1: जी
0: से
1: जी
0: पहले।
1: जी
0: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए। तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
1: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप।
0: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई।
1: जी
0: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे।
1: जी
0: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूँ।
1: क्या बात है।
0: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है।
1: जी
0: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया। वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको
1: वो
0: बताऊंगा,
1: कहानी में आगे आएगा।
0: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए।
1: बाप रे, 10-12 घर
0: 2 साल में,
1: जी।
0: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंद गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे। लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही।
1: जी
0: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
1: बाप रे बाप,
0: ये लोग सुन के बहुत हैरान हो गए।
1: 13.5 घंटे।
0: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया। वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
1: ओहो,
0: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ। क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4:30-5 बजे।
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें,
0: नहीं
1: बच्चों के साथ खेलें?
0: कभी हुआ ही नहीं। यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म
1: हाँ,
0: होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ
1: फिर
0: ने
1: तो।
0: कहा है खत्म होगी बात,
1: जी
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है। तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है ये।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद सफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए,
1: जी बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।

0: 12 घंटे
1: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
0: जी,
1: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक तो 13 घंटे हो गए,
0: हाँ
1: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
0: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे
1: सिनेमा
0: हैं,
1: का वो भी
0: वो भी
1: कोई
0: मोहम्मद शफी के साथ।
1: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है
0: अच्छा
1: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग।
0: जी,
1: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
0: मोहम्मद शफी के घर।
1: माहिम में, और वहां जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए,
0: जी
1: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आ जा आ जा। उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे
0: फिल्म
1: वो,
0: इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती
1: बहुत बड़ी हस्ती।
0: जी।
1: तो उन्होंने आया, पीटर आ जा आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई बजाओ,
0: नोटेशन रख दिए।
1: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1 2 3 4 में चौथे में था, 5 6 7 8 हो गए या 9 हो गए 8 हो गए जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे मेरे से फट से आ, तुम बजाओ तुम बजाओ तुम। और मैं नहीं बजा सका उससे,
0: अरे बाप रे,
1: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं मुझे हुआ क्या, शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
0: बिल्कुल।
1: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
0: जी,
1: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
0: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी
1: 10 रुपए पूरे
0: जी।
1: दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
0: तो 15 हो गए।
1: मुझे 5 रुपए और दिए। तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूं ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे, शायद फटी होगी
0: जी
1: मुझे ध्यान
0: जी
1: नहीं है।
0: जी जी
1: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई,
0: इतनी बड़ी रकम।
1: इतनी बड़ी रकम कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, गुरु जी को माथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है,
0: 12 बरस की उम्र में।
1: नहीं 14 वर्ष हो गया,
0: अच्छा
1: 62,
0: जी जी
1: 14 वर्ष।
0: जी
1: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई
0: बिल्कुल।
1: थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले चलो उठो चलो चलते हैं, कहाँ चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी दादर गए, दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं।
0: हाँ
1: तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
0: गजब।
1: 2 मेरे लिए एक अपने लिए, और मुझे लगता है शायद हमने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
0: क्या बात है।
1: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैंने डैडी को लेके गया। बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या रामप्रसाद जी क्या डालो।
0: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी
1: प्यारेलाल जी के पिताजी
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे
1: ट्रम्पेट
0: वो।
1: बजाया करते थे, और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है, हमने
0: जी, कोई उनका
1: के
0: नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे।
1: बाबा जी बोले ना, तो अदरवाइज

0: पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था।
1: जी,
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था। और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूं,
1: बहुत सख्त थे वो,
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं।
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे। जी कहते
1: अच्छा
0: ये मेरा राम सिंह है,
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था। राम
1: हाँ
0: सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है।
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं,
1: नोटेशंस,
0: नोटेशन लिख रहे हैं।
1: गजब,
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: ये रफ्तार थी, जैसे
1: टाइप कर रहे
0: टाइप
1: हैं।
0: करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा ऐसा लिखते थे वो।
1: जी
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है। और
1: वाह,
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था वो
1: उस वक्त,
0: बहुत
1: प्यारेलाल जी।
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था,
1: अच्छा,
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर। और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि,
1: हाँ 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था। और प्यारे भी वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो अंतोनी गोंसाल्विस थे,
1: जी, एंथनी गोंजाल्विस।
0: जिनसे 2 ढाई महीने मैं भी सीखा हूं।
1: अरे वाह वाह,
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6 6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा। और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया ही नहीं जाता। आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन,
1: अरे बाप रे, और आपकी इतनी कम उम्र।
0: इतनी कम उम्र, ये शायद 63 64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े,
1: जी, शेख मुख्तार,
0: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह,
0: 6 फुट के थे, छह
1: हाँ बहुत
0: बहुत
1: हट्टे कट्टे।
0: हट्टे कट्टे, उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड ये चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया। और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने। उस 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है
1: बाप रे,
0: 15 16 साल की उम्र।
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा, नौशाद साहब का।
1: जी
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सब 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था। तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन, मैंने कहा हाँ चाचा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है,
1: कौन सी फिल्म है?
0: वो मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक एक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो है फिल्म नहीं हुआ करती थी,
1: जी।
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग पर
1: अच्छा,
0: बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता
0: ऐसा
1: था।
0: नहीं होता था।
1: गजब, तो 64 में किसी फिल्म में आपने
0: हाँ,
1: बजाया।
0: तो वो सोलो बजाए, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया,
1: हाँ
0: मैं 8 10 लोगों में नहीं बजा सका। और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है,
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे,
1: वाह,
0: पीटर साहब और जोराडो साहब, बड़े बड़े नाम। और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूं,
1: गजब गजब, क्या बात है।
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं।
0: ये
1: ओहो
0: 64 की बात है,
1: जी, अब
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से
0: ये
1: आया?
0: लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ
0: पहला सोलो था,
1: जी
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं,
1: जी
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की
0: समबडी इज देयर,
1: एंट्री हो गई
0: समबडी इज देयर।
1: जी। बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं, और ये तमाम चीजें

0: हैं, हम 63-64 के जमाने में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए, आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
1: 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा ऐसा का,
0: जी,
1: हम लोग सब यही बोलते थे यार ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
0: करिश्मा ही
1: कौन
0: काम है।
1: करिश्मा ही का। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा,
0: हाँ,
1: जब प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।
1: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर हो के आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूं अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूं और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें भी हुई

0: वो फिर हमारे पास आई तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगल आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
1: पूरा म्यूजिक भी,
0: पूरा म्यूजिक
1: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
0: सब
1: भी।
0: सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही भव्यता
1: भव्यता,
0: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगल आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
1: जी बिल्कुल,
0: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी,
1: सारे हैं,
0: और उस ट्रैक में
1: हिसिंग भी है।
0: ये चल रही है।
1: अरे बाप रे,
0: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे? तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूँ। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
1: जी,
0: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने
1: क्लीन
0: अपने
1: किया।
0: टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय, तनय गज्जर जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
1: जी
0: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7 8 दिन ये गए,
1: जी
0: उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
1: बाप रे,
0: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया।
1: जी
0: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने है। लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है। ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
1: मैं जानता हूँ।
0: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
1: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: नोटेशंस,
0: स्कोर लिखा गया है।
1: ओ गॉड।
0: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5 2 महीने लग गए।
1: और गानों के नोटेशंस करने में,
0: वो
1: क्योंकि
0: भी हाँ वो भी
1: अलग
0: हो
1: अलग
0: गया,
1: इंस्ट्रूमेंट के
0: सब सब
1: नोटेशन होंगे
0: इंस्ट्रूमेंट
1: कि
0: का।
1: वायलिन के ये हुए, वायोला के हुए।
0: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए थे, हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए
1: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए?
0: पार्ट बाय पार्ट।
1: अच्छा
0: उस टाइम तो लाइव थे
1: जी, यहां तो
0: अभी।
1: ट्रैक थे।
0: और इस मुगल आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
1: बाप रे बाप
0: ये
1: रे।
0: हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन, 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
1: गजब।
0: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया,
1: सितारे,
0: फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको,
1: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
0: वहां आराम से
1: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
0: पूरे
1: लेकिन
0: निकलेगा।
1: गायक की आवाज सेम रखी गई।
0: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
1: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक, जो
0: हाँ
1: डॉल्बी आप लोगों ने
0: जी
1: किया
0: जी जी
1: था, उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस हैं, बहुत
0: हाँ
1: लंबे, बहुत लंबा पीस है,
0: बहुत लंबे
1: ढाई
0: पीस
1: तीन
0: वो
1: मिनट का
0: सारे
1: पीस
0: किए
1: है।
0: हुए।
1: जी
0: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो दो सितारे बज रही हैं। वो रखा हुआ पहले का,
1: हाँ, उसी के ऊपर बजा
0: उसी
1: दिया।
0: के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है। जैसे
1: इस तरह
0: जैसे
1: से,
0: पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है,
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया।
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा मजे की बात यह है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्चा हुआ था
1: जी
0: उस टाइम का, मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है।
1: जी,
0: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपए पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो। मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म है
0: आज भी
1: वो।
0: अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी वो।
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन

0: भी डिजिटल देखें
1: तो
0: तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए,
1: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए, वो
0: जिंदाबाद है मोहब्बत
1: जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद,
1: क्योंकि
0: ये
1: क्या
0: गाना
1: है
0: सुनते हैं।
1: उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज
0: बहुत
1: किया।
0: बड़ा, बहुत बड़ा, वो जिस तरह से ऊपर जाता है पूरा,
1: हाँ
0: वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया था
1: ये
0: इसका,
1: सुनाइए
0: सुनते हैं।
2: वफा की रात

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी
0: कि ये संगीत
1: तो
0: आपने
1: यहाँ
0: क्रिएट
1: मैं एक
0: किया
1: बात
0: था।
1: बता दूं, इस दौरान जो है ना, मेरा जो लड़का है गुरमीत,
0: जी
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलिंस की डबिंग है, वो सब लिखना, वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई। जी
0: जी
1: जी
0: क्या
1: आगे
0: बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में,
1: जी
0: जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेज भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन।

0: मोहन जी।
1: ओहो, देखिए जी, नौशाद साहब के यहाँ थे, उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि
0: हाँ
1: मोहम्मद साहब साहब थे, लेकिन
0: जी
1: उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है
0: इतना लंबा समय निकल
1: जी।
0: गया
1: जी, क्योंकि सफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे, तो
0: जी।
1: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ, मैं घर गया जी। चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना।
1: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या? चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है? देखा तो हुआ है इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी, वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा,
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ। वो पहली मुलाकात
0: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: नौशाद
0: थी।
1: साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है, तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो हम बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी,
0: जी,
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूं, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी
1: आज
0: जगह।
1: भी वो कुर्सी, और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठे थे
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं,
0: जी।
1: गुलाम अली साहब से ले, आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे, बैठा जी आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है,
0: जी
1: तहजीब और इज्जत,
0: जी
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है
1: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना,
0: जी।
1: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब। तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनको ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफी मियाँ आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं, नहीं, नहीं, आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए, ये बात है 72 की, क्या
0: जी
1: उम्र होगी मेरी? 48, 58, 68, 24 साल की उम्र,
0: जी जी
1: 23-24 की।
0: जी
1: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए,
0: जी
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का। तो
0: हाँ
1: मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
0: हाँ
1: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
0: तो ये 3 गुना मांगा
1: 750 रुपये आ गए।
0: जी,
1: बोले ठीक है,
0: 750 रुपये एक गाने
1: एक
0: के।
1: गाने का। बोले ठीक है,
0: गजब।
1: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया,
0: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ
1: साथ
0: काम
1: काम
0: करना,
1: किया,
0: मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम, हाँ, कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना
0: जी
1: समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए,
0: अच्छा
1: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है।
0: जी
1: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अब्बू के पास ले
0: अबू
1: चलिए, ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया
0: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही
1: प्रीति की
0: हुआ।
1: वजह से। मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब वो अब्बू और वो प्रीति, अब्बू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं।
0: गजब।
1: उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़े बड़ा अच्छा लगा, बुजुर्ग जब
0: नाम लेके पुकारे
1: नाम लेके पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी।
1: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे,
0: हाँ
1: पता नहीं क्या बात है।
0: अरे
1: हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। गौतम जी आ गए बेटा।
0: वाह,
1: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी। ये गाना हमने सुना, एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया है। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सागोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी ये शायद 1963-64 की बात होगी,
0: जी
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं,
0: हाँ, बहुत बिजी थे।
1: बिजी रहते थे। और उस टाइम पे म्यूजिशंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी,
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए, तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी आइए आइए, बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माई फादर, मेरे डैडी बोलते हैं
0: ही
1: उनको,
0: इज माय
1: इज माई
0: फादर।
1: फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन सर? वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन। ओ अच्छा, यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली, वायलिन खोली और वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया, तो
0: जिसकी दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरडिया साहब ने वो पोल का सिखाया था।
0: जी
1: वो पोल का कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है। तो वो सुनते रहे,
0: जी
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब,
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया,
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया, और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है, मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर
1: उनके
0: 75
1: जाने
0: तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था।
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी
1: हाँ
0: ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम
1: हाँ इसी दौरान

0: मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी, तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था,
1: मास्टर जी यानी सोनिक जी।
0: सोनिक साहब, हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा,
1: जी।
0: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
1: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
0: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे,
1: जी
0: अरेंजर मुझे याद नहीं
1: जी
0: जी। रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम किया।
1: हाँ
0: हाँ, रवि साहब
1: जी
0: क्या, बहुत काम किया, तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब,
1: जी
0: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो, तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक 1 सुनाओ, म्यूजिक 1 सुनाया तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
1: पसंद नहीं आ रहा है।
0: कुछ इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया। तो गाना था, हर तरफ अब यही अफसाने, तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया,
1: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का
0: हिंदुस्तान
1: गाना।
0: की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
1: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
0: उसके
1: है।
0: बावजूद भी वो गाना मैं बजाता
1: ये
0: रहता,
1: किस धुन पे किया था
0: पता
1: आपने
0: नहीं, आई डोंट नो,
1: जी?
0: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता
1: क्योंकि
0: नहीं,
1: मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था, एक फौजी
0: लेकिन
1: शख्सियत
0: लेकिन
1: थे
0: क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा,
1: जी।
0: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था,
1: हाँ
0: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया,
1: अपनी तरफ से।
0: अपनी तरफ से बज गया,
1: वाह
0: मैंने
1: वाह,
0: जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले, मेरे तो पसीने छूट गए, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर, आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ, एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी।
1: हाँ
0: मैंने, मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने में, सर या आई प्लेड दिस, तारा री री री तिरी री तारा री तर तर री री द द द त, ये बजाया मैंने,
1: हाँ वो एक पीस। आप
0: ओरिजिनल बजाया
1: वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
0: लाया तो हूं।

0: जान, ये जो उत्तम बजा रहा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वैलिड होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वैलिड।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: यहां से यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन
0: बहुत गानों
1: बजाए
0: में सोलो बजाया,
1: जी,
0: फिर
1: कुछ
0: उनका
1: गानों का जिक्र हो जाए
0: बैकग्राउंड मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं।
1: जी।
0: हाँ ये गाना याद है मुझे, बाकी भी याद नहीं है मुझे।
1: जी
0: हर तरफ

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा और दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, कुछ तारीखें कैलेंडर में बस तारीख नहीं होती, वे हमें अपने आसपास, अपने भीतर और अपने भविष्य की ओर देखने का एक बहाना देती हैं। आज 20 सितंबर है, एक ऐसा दिन जो हमें अपने घर आंगन से लेकर पूरी धरती तक स्वच्छता का अर्थ समझाता है, खेल के मैदान से जीवन में अनुशासन और ऊर्जा की बात करता है, साथ ही एक ऐसी महिला की याद दिलाता है जिसने भारत की शिक्षा, समाज और स्वतंत्रता की चेतना को अपनी आवाज दी। कार्यक्रम आज आप सुन रहे हैं आशीष वर्मा के साथ। दोस्तों, कभी कभी हम सफाई को बहुत छोटी सी चीज समझ लेते हैं। घर के बाहर झाड़ू लगा दी, कूड़ा उठाकर डिब्बे में डाल दिया और समझ लिया कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन स्वच्छता की कहानी इतनी छोटी नहीं है। यह हमारे घर की चौखट से निकलकर गली, मोहल्ले, शहर, नदी, जंगल और आखिर

संचार पूरी धरती तक जाती है और इसी भावना के महत्व को समझते हुए आज 20 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे के रूप में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य केवल एक दिन सफाई करना नहीं बल्कि लोगों में कचरे के प्रति जिम्मेदारी और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की स्थायी आदत विकसित करना है। सोचिए जिस रास्ते से हम और आप हर रोज गुजरते हैं उस पर पड़ी अगर हम छोटी मोटी कोई गंदगी हमें दिखती है, अगर एक कागज की ही बात करें, अगर हमें दिखाई देता है लेकिन उसी कागज को उठाने के लिए हमारा हाथ कितनी बार आगे बढ़ता है। शायद स्वच्छता की असली शुरुआत यहीं से होती है। कूड़ा सिर्फ देखने में गंदा नहीं होता, वो हमारी मिट्टी, पानी और हवा पर भी असर डालता है। प्लास्टिक और दूसरे कचड़े का गलत तरीके से फेंका जाना नालियों को जाम करता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और प्रकृति के सामने एक लंबी चुनौती खड़ी करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में पैदा होने वाला ठोस कचरा एक बड़ी वैश्विक चुनौती है और विश्व स्वच्छता दिवस इस समस्या के प्रति जागरूकता और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने का एक अवसर है। लेकिन दोस्तों, सफाई का मतलब सिर्फ सड़क पर झाड़ू लगाना ही नहीं, गीले और सूखे कचरे को अलग करना है। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं को कम करना, बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ रखना, खाने की बर्बादी को रोकना, पुरानी वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करना, ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और इन सब में दोस्तों युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि युवा सिर्फ बदलाव की उम्र नहीं होते, वे बदलाव की ऊर्जा भी होते हैं। एक युवा अपने घर में कूड़ा अलग करने की आदत अगर शुरू कर दे, स्कूल या कॉलेज में स्वच्छता अभियान चला सकता है, अपने दोस्तों को समझा सकता है कि सार्वजनिक स्थान किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी साझा जगह है। और शायद हमें स्वच्छता को आदेश की तरह नहीं बल्कि संस्कार की तरह देखना होगा। जिस तरह हम अपने कमरे को साफ रखते हैं क्योंकि वो हमारा है, उसी तरह सड़क, पार्क, नदी और शहर को भी अपना समझना होगा। बल्कि ये भी कि जितना संभव हो सके किसी और को भी कूड़ा फैलाने से रोकेंगे, समझाएंगे समझदारी से, अपने आसपास पड़े कचड़े को देखकर आंखें नहीं फेरेंगे। और सबसे जरूरी बात कि सफाई को सिर्फ किसी एक अभियान का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बनाएंगे। क्योंकि एक शहर साफ सिर्फ चमकती हुई सड़कों से नहीं बनता, वो बनता है जिम्मेदार चमकते हुए नागरिकों से भी, एक छोटी सी आदत से भी, एक छोटे से बदलाव से भी। दोस्तों, एक हाथ में उठाया हुआ छोटा सा कचरा कभी कभी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी विरासत बन जाता है। तो आज जब हम अपने आसपास देखें तो सिर्फ ये नहीं सोचना है कि सफाई कौन करता है, कौन करेगा। एक पल के लिए ये भी सोचने की जरूरत है कि शायद शुरुआत हमारे ही हाथ से हो सकती है। और जब हजारों हाथ एक साथ उठेंगे ना, तो सिर्फ कचरा नहीं उठेगा, एक बेहतर कल भी उठ खड़ा होगा।

0: दोस्तों, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और जिस मिट्टी पर हमारा जीवन टिका है, उसकी स्वच्छता ही हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारी जरूरत भी। स्वच्छ वातावरण केवल सुंदर दिखाई देने वाली जगह का नाम नहीं, यह स्वस्थ जीवन, जागरूक समाज और बेहतर भविष्य की पहली सीढ़ी भी है। इसी महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए अब आपको हम सुनवा रहे हैं स्वच्छ वातावरण विषय पर प्रिया पांडे की ये वार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया पांडे है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वच्छ वातावरण हमारी जिम्मेदारी कैसे हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हर कोई स्वच्छ और हरे भरे वातावरण में रहना पसंद करता है और हमेशा स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण का सपना भी देखता है। तो दोस्तों, बहुत कम लोग स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए कोई भी कदम उठाने का प्रयास करते हैं, भले ही नागरिकों, एजेंसियों और गैर सरकारी लोगों को यह सुनिश्चित जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे। लेकिन दोस्तों, स्वच्छ और हरा भरा

0: वातावरण बनाए रखने के लिए उसका समर्थन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है और स्वस्थ रहने तथा लंबी उम्र जीने में मदद मिलता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, तो इसके परिणाम बहुत भयानक है, जैसे बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, इन समस्याओं को कम करने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है जिससे हमारे पर्यावरण स्वच्छ और हरे भरे हो सके। हमारी पृथ्वी पर हमारे साथ साथ कई जीव जंतु रहते हैं। हमारी जीवित पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन तरीके हैं, जो अंततः संबंधित शहरों और पूरे देश में नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। तो देखिए, हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। सड़क पर या अपने आसपास गंदगी न फैलाएं। गंदगी फैलाने से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, जो हमारे आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं और उसके साथ साथ हमें स्वच्छ भी रखने का कार्य करते हैं। हमारे पर्यावरण को साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें ताजी हवा मिलती है और प्रदूषण मुक्त होती है। यह अशुद्ध वातावरण समाज की स्थिति को खराब कर देती है, जैसे बीमारियों के आगमन और कई अन्य संबंधित समस्याओं का कारण बनता है। पर्यावरण को साफ रखने के लिए एवं जीवन को अपनाने के लिए उसका समर्थन करना बहुत ही आवश्यक है। समाज में हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन, दवाइयाँ आदि निर्माण सामग्री मिलती हैं। बच्चों को अपने आसपास के समाज के बारे में जागरूकता का ज्ञान देना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए भी समाज के वास्तविक मूल्य को संरक्षित करते हैं। और हम सभी मनुष्यों का यह एहसास बढ़ रहा है कि हवा, पानी, मिट्टी और भोजन की गुणवत्ता हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे एलर्जी, श्वसन रोग और कैंसर एवं शरीर के हार्मोन्स का विकास और समय से पहले मृत्यु हो जाती है। स्वच्छता का अर्थ अपने आसपास की जगह को गंदगी से मुक्त रखना और खुद को साफ सुथरा रखना है। लेकिन सिर्फ अपने घर की और खुद की सफाई स्वच्छता नहीं होता है, बल्कि स्वच्छता का मतलब हमारे घर के आस पड़ोस में भी मौजूद गंदगी, जैसे धूल, मिट्टी, खुला कचरा, जमा हुआ गंदा पानी, गड्ढे, इन सब से भी मुक्त होना जरूरी है। अगर हमारे चारों तरफ सफाई बनी रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपका मन साफ हो तो आप तब भी स्वच्छ माने विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
2: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
2: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2: आवेदन शुल्क 118 रुपए निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से पीबीबी

0: सी ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आशीष वर्मा के साथ विश्वविद्यालय। दोस्तों, ये सिर्फ किताबों, परीक्षाओं और डिग्रियों की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां युवा अपने सपनों को आकार देता है, अपने व्यक्तित्व को पहचानता है और अपने जीवन की दौड़ खुद से तैयार करता है। इसलिए विश्वविद्यालय जीवन में खेलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाते, खेल हमें हार के बाद उठना भी सिखाते हैं। मैदान पर दौड़ता हुआ खिलाड़ी शायद हमें सिर्फ कुछ सेकेंड या कुछ मिनट दिखाई देता है, लेकिन उस प्रदर्शन के पीछे घंटों की मेहनत, अनुशासन, अभ्यास और धैर्य छिपा होता है। विश्वविद्यालयों में खेल युवाओं को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के साथ ही साथ टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन और आपसी सहयोग जैसे गुण विकसित करने का अवसर देते हैं। एक टीम में हर खिलाड़ी अलग अलग होता है, उसकी क्षमता अलग होती है, उसकी गति अलग होती है, लेकिन लक्ष्य एक होता है। शायद जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हर किसी की दौड़ अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है, लेकिन रास्ते में चलने वाले लोगों की जरूरतें सभी की एक जैसी ही होती है। आज जब पढ़ाई और तकनीक हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है, तब खेल हमें स्क्रीन से बाहर निकलकर मैदान की खुली हवा में सांस लेने का अवसर देता है। खेल शरीर को सक्रिय रखते हैं और मन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। और युवाओं के लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि खेल हमें यह समझाते हैं कि सफलता हमेशा पदक के रूप में नहीं आती। कभी सफलता अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने में भी होती है, कभी गिरकर दोबारा खड़े होने में भी होती है, और कभी सिर्फ इतना करने में कि हमने आज कल से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस सिर्फ खिलाड़ियों का दिन नहीं, यह हर उस युवा का दिन है जो अपने जीवन में ऊर्जा, अनुशासन और संतुलन चाहता है। दोस्तों, अगर समझे या माना जाए तो जिंदगी भी एक मैदान की तरह है, यहां भी कभी तालियां मिलती हैं, कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन खेल का सबसे बड़ा सबक यही है कि मैच खत्म होने तक कोशिश खत्म नहीं होती। तो उठिए, मैदान की ओर देखिए, अगर घर में पड़े हैं तो बाहर निकलिए, दौड़िए, सेहत का ध्यान रखिए, खेलिए और पसीना बहाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में सिर्फ ताकत नहीं होती, वहां सपनों को पूरा करने की ऊर्जा भी होती है।

युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, 20 सितंबर ये तारीख हमें डॉक्टर एनी बेसेंट को भी याद करने का अवसर देती है। 20 सितंबर यानी आज ही के दिन साल 1933 को अडियार मद्रास में उनका निधन हुआ था और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, वे लेखिका, वक्ता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और भारतीय स्वशासन के समर्थक के रूप में जानी गईं। भारत आने के बाद उन्होंने शिक्षा और सामाजिक जागरण के क्षेत्र

में महत्वपूर्ण काम किया। साल 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की वे अध्यक्ष बनी और जीवन के अंतिम वर्षों तक इस भूमिका में रहीं। डॉक्टर एनी बेसेंट का भारत की शिक्षा में विशेष योगदान हमेशा उल्लेखनीय रहा। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विकास से भी जुड़ी। राजनीतिक के रूप में भी वे भारत के स्वशासन की समर्थक बनी। साल 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन से जुड़कर भारतीय स्वशासन की मांग को आवाज दी और साल 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। दोस्तों, डॉक्टर एनी बेसेंट का जीवन कई पड़ावों से होके गुजरा, लेकिन उनके जीवन की एक बात लगातार दिखाई देती है, अपने विचारों को शब्द देने से साहस। शायद इसलिए उनकी पुण्यतिथि हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को याद करने का दिन नहीं देती, बल्कि ये भी पूछती है कि हमारे शब्दों में कितनी ईमानदारी है, हमारे विचारों में कितनी रोशनी है और अपने समाज के लिए कुछ करने की हमारी इच्छा कितनी सच्ची है। और इसलिए दोस्तों, कुछ लोग चले भले ही जाते हैं, लेकिन उनके विचार, उनके काम और उनके सवाल समय के पन्नों पर हमेशा चलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने स्वच्छता से जिम्मेदारी तक, खेल से ऊर्जा तक और इतिहास से प्रेरणा तक का सफर तय किया। स्वच्छता हमें अपने आसपास को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है, खेल हमें गिरकर फिर से उठना सिखाते हैं और डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी शख्सियत याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की आवाज भी कभी कभी पूरे समाज में हलचल पैदा कर सकती है। शायद बदलाव हमेशा बड़ी चीजों से शुरू नहीं होता। कभी एक हाथ कूड़ा उठाता है, कभी एक युवा मैदान में दौड़ता है और कभी एक आवाज किसी सोई हुई सोच को फिर से जगा देती है। और अब कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति। सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओपरा से। नमस्कार।

0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति आशीष वर्मा की है और प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार वर्मा।
1: दिल की धड़कन, बीट का वाइब्रेशन,
2: आपकी चॉइस, हमारा डेडिकेशन।
1: कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो
4: हेलो,
2: आपके दिल की आवाज आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला, जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
1: आदरणीय श्रीमान जी को प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी सर बहुत बहुत नमस्कार। परिचय दें सर अपना।
1: सुनील झा बोल रहा हूँ भोपाल से सर।
0: कैसे हैं सर?
1: सर बहुत बढ़िया है, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
0: जी
1: काफी इच्छा थी सर से बात हो जाए तो आज हो गई।
0: बिल्कुल सर, एक जुड़ाव तो खैर हो ही जाता है जिससे हम मिलते हैं, जिससे हम बातचीत भी करते हैं, तो एक अपनापन एक जुड़ाव तो लाजमी है कि होना ही होना है।
1: ओबेरा से पता नहीं सर हमारा और आप लोगों से क्या रिश्ता हो गया कि मन मानता ही नहीं और आपका बराबर प्रोग्राम सुनता हूँ। कोई ना कोई दोस्त का फोन लग ही जाता हमारा। हेलो फरमाइश, एक परिचित होता है आपसे।
0: क्या बात है, बहुत खुशी मिलती है सर कि आप अपने कीमती समय में से हमारे लिए जो समय निकालते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और एक अपनापन आप जो महसूस करते हैं, इसके लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: जैसे हमारा खुद का परिवार, फिर हमारा श्रोता परिवार, आकाशवाणी परिवार, हमारा सब एक ही है सर।
0: और अच्छा है ये परिवार और बढ़े, फले फूले, ताकि जीवन में सुकून और एक जो प्यार है, अपनापन है, वो हमेशा बना रहे।
1: अभी चारों ओर पूरे देश में गणपति की जो धूम मची है उसकी मैं सर आपको, आकाशवाणी ओबरा को और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और त्योहार जो शुरू होते हैं तो कुछ ना कुछ इनके पीछे जो प्राकृतिक, वो भी जो पुराने लोग थे उनको भी राज छुपा हुआ है
0: जी।
1: क्योंकि जो आजकल ये मौसम में बदलाव होता है, बरसात के बाद में जो काफी जीव जंतु भी होते हैं और क्या थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत असर पड़ता है
0: जी।
1: थोड़ा खाने पे भी पाबंदी रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें ना खाएं जिससे कि नुकसान हो जाए।
0: बिल्कुल, और अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे नहीं तो फिर मंगल जीवन में आएगा कैसे। और आज के दिन हम जो है विश्व स्वच्छता दिवस भी मना रहे हैं। जितनी हम साफ सफाई अपने आसपास रखेंगे तो आधे से ज्यादा तो हमारी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है।
1: बिल्कुल, जितना स्वच्छ रहेगा उतना ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है
0: जी। बताइए आज क्या पसंद है?
1: जो सर मरते दम तक फिल्म रहेगी, गणपति बब्बा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हमारे कुछ साथी का नाम दे सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, बताएं बताएं।
1: ये हमारे गौतम रायबोले जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं, तुकाराम यादव जी हैं, केसी सिंह राजपूत जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सुरतिया, गंगाधर सावनकर जी हैं, और हमारे धीरज भाई रेवारी है और हमारे राजू यादव जी हैं, और जितने भी सुन रहे हैं सभी को रहेगा।
0: फिर हम सब मिलकर के गणेश भगवान की वंदना करते हैं इस गीत के माध्यम से, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद वाली ये भक्ति रचना।

0: हाँ जी सर नमस्कार
1: जी। नमस्ते, परिचय दें
0: जी। उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
1: उदयलाल जी कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
0: झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से।
1: अरे वाह, आपके नाम से भी लग रही थी वो राजस्थान वाली फीलिंग आ भी रही थी।
0: जी सर
1: बताइए सर क्या करते हैं?
0: ये हमारा खानदानी बिजनेस है केटरिंग का। पिताजी भी करते थे, दादाजी भी करते थे और मैं भी कर रहा हूँ।
1: ये वो जो स्पेशली राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी वाला जो काम होता है उसकी बात कर रहे हैं?
0: हाँ सर, वो शेरवानी होती है, अचकन होती है और जोधपुरी कोट होते हैं।
1: अरे वाह, वो तो बड़ी अच्छी लगती है।
0: बहुत ही अच्छी शानदार लगती है सर।
1: क्या बात है, एक कोट की सिलाई कितनी होती है आपके यहाँ?
0: सर उदयपुर में तो 5,000 रुपया है।
1: अरे वाह,
0: पूरे सूट की।
1: अच्छा,
0: पैंट कोट और शर्ट।
1: बहुत बढ़िया।
0: जी सर, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए टेलर के धंधे में 2 साल में एक बार रेट बढ़ती है
1: जी।
0: अगली दीपावली पर रेट बढ़ेगी।
1: आप लोग का काम भी तो मेहनत का काम है और
0: बहुत मेहनत का काम है सर।
1: कई बार तो ऐसा होता है कि कपड़े फट जाते हैं मगर सिलाई नहीं टूटती कहीं से भी।
0: हाँ जी सर।
1: चलिए बहुत बढ़िया सर, आपका काम ऐसे ही फले फूले अच्छा चले। बताइए आज क्या पसंद है?
0: क्रांति का गीत, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले गड़ी दो गड़ी। सुनेंगे सबसे पहले तो आप सुनेंगे
1: जी,
0: और आकाशवाणी परिवार के सभी आपके मेंबर सुनेंगे
1: जी,
0: आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोता सुनेंगे और हमारे कुछ मित्र है, गौतम राय बोले जी, गंगाधर जी, लोकेंद्र जी और भगवान सिंह जी, शेखचंद जी अग्रवाल, धीरज भाई रेवारी।
1: आपके जितने दोस्त हैं साथ में आकाशवाणी ओबरा परिवार और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सबके साथ सुनते हैं क्रांति फिल्म का ये सदाबहार गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: हेलो सर जी, नमस्कार
1: जी। नमस्ते, परिचय दें सर।
0: जी सर, मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
1: कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं?
0: जी सर, मैं अच्छा हूँ और आपके कार्यक्रम में आज पहली बार जुड़ा हूँ सर। आपका कार्यक्रम तो मैं सुनता रहता हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप हेलो फरमाइश एक रेडियो ग्रुप में सभी दोस्त रिकॉर्डिंग करवाते हैं सर
1: जी,
0: और कार्यक्रम की प्रस्तुति आपकी बहुत लाजवाब रहती है सर जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप समय निकालते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आकाशवाणी ओबरा के प्रसारण को सुनते हैं, ये जानकर के सर हमें अच्छा लगा। और बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी?
0: सर अभी तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश में बढ़िया बारिश हो रही है सर। सोयाबीन और मक्का के

0: जी राजा भैया फिल्म का गाने के बोल हैं, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ।
1: तो चलिए ठीक है, आपको और आपके दोस्तों को सुनवाते हैं ये गीत राजा भैया फिल्म से।

0: हेलो,
1: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय दें।
0: गंगाधर सावनकर।
1: क्या बात है, महाराष्ट्र से?
0: जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप।
1: जी बिल्कुल, बताइए अपने बारे में हमारे श्रोताओं को।
0: सर मैं एक रिटायरमेंट हूँ
1: जी,
0: अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ।
1: और जैसा कि आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आप प्राइवेट काम कर रहे हैं।
0: हाँ जी।
1: अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि ये जिंदगी रुक गई है, खत्म हो रही है, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, मन में एक जो निगेटिविटी आती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे?
0: मैं तो कहना चाहता हूँ सर, रिटायरमेंट के बाद वो बूढ़ा हो गया बिल्कुल समझना ही नहीं अपन। काम के उसलिए अपन बढ़ाते रहना, काम करते रहना सर, सेहत अच्छी रहती है। अपन घर में अगर बैठ के रहेंगे अपनी सेहत एकदम खराब हो जाती
1: है। जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात भैया ये भी है कि मन में एक नकारात्मक भाव भी आने लगता है, लगता है जैसे अब समाज में हमारी कोई जगह नहीं रही, घर परिवार में भी अब वो वैल्यू नहीं मिल रही है। इससे अच्छा है कि हम अपने आप को जितना ज्यादा हो सके व्यस्त रखें और जिंदगी को खुशहाल होकर के जिए। बताइए सर, आज क्या
0: आप तो ऐसे ना तो फिल्म का गाना है,
1: तो इस तरह से
0: मेरी
1: जिंदगी में शामिल है। व्यक्तिगत जीवन में भी कोई है जिसको आप ये गीत सुनवाना चाहते हैं?
0: नहीं सर, व्यक्तिगत तो किसी नहीं है, आप ही है अभी।
1: चलिए ठीक है, फिर हम और आप और हमारे साथ जुड़े जितने भी श्रोता भाई हैं और साथ ही आपके जो दोस्त हैं,
0: गौतम राव जी, तुकाराम जी, सुनील झा, भगवान सिंह जी, तनुश्री, केसरी सिंह राजपूत जी और राजेंद्र गंगवार, सुरेश यादव पर्यटन के, सभी को सर और आपको भी गाना।
1: हम आप और हमारे जितने भी श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद वाला ये गीत।

0: तो श्रोताओं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में ये था आपसे बातचीत का आज का सफर, जिसे आपके लिए पेश किया आशीष वर्मा ने। गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति आशीष वर्मा की थी और प्रस्तुत करता थे सचिन कुमार वर्मा।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम प्रमोद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आ प्रोन्नति बोर्ड के ओरी से लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती 2023 के तहत चुनल गई 912 अभ्यर्थियों के लखनऊ में नियुक्ति पत्र बटले। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि आज प्रदेश में कानून के राज हो, प्रदेश का तस्वीर बदलने में यूपी पुलिस के सराहनीय योगदान रहो।
1: आज यूपी के ओवरऑल परसेप्शन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका यूपी पुलिस की है और यूपी पुलिस ने वह करके दिखाया है जो कभी यूपी के अंदर नहीं हुआ था और आज उसी का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने उपद्रव ग्रस्त प्रदेश को उसकी सही पहचान उत्सवपूर्ण प्रदेश के रूप में बदला है, कर्फ्यू मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की छवि को प्रस्तुत किया है।
0: एकरे बाद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर में उत्कर्ष नारी सम्मान युवा स्वाभिमान कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल भइले। सब्सिडी वाला रसोई गैस का बुकिंग बदे 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ल बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी हुई। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय कहले हो कि पात्र परिवार ने के सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर देवे बदे ई व्यवस्था कइल गइल हो। गैस मंत्रालय साफ कहले हो कि एकर उद्देश्य कौनो पात्र परिवार के LPG से वंचित कैल नहीं हो। जौन ग्राहक पहले ही सत्यापन पूरा करा चुकल हमें उन्हें ई दोबारा करौले के जरूरत नहीं हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC 2025 का मेन परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के समाज कल्याण विभाग की ओर से इंटरव्यू के खास तैयारी करावल जाई।

0: एकरे विभाग के ओर से 23 सितंबर से मॉक इंटरव्यू के आयोजन कैल जाय। ई कार्यक्रम कई फेरा में चली। एकर आयोजन गोमती नगर के छत्रपति साहू जी महाराज शोध आ प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन में कैल जाय। एकरे जरिया से अभ्यर्थियन के इंटरव्यू के बारीकी व्यक्तित्व प्रस्तुतिकरण आ पुरहर भरोसा के साथे सवालन के जवाब देहले के अभ्यास करावल जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा का मंत्र आ लगातारे प्रतिबद्धता से कैल गई सार्वजनिक सेवा का 25 बरिस पूरा कई रहल हवें। सेवा आ सुशासन के यही नजरिया से प्रेरित होके सरकार 2047 ले विकसित भारत बनावले के दिशा में लगातारे काम कई रहल हो। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर खास श्रृंखला प्रसारित कई रहल हो। प्रधानमंत्री जन मन योजना के जरिया से देश का कमजोर जनजातीय लोगों के जिंदगी में आयल बदलाव के बारे में एगो रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन एक केंद्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत के कमजोर जनजातीय समूह को विकास से जोड़ना है। यह योजना विकास को आजीविका और आर्थिक अवसरों से भी जोड़ती है। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी दी गई है। योजना के तहत जून 2026 तक 2.67 लाख पक्के मकान पूरे हो चुके हैं। 8,473 गांव में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के जरिए होने वाला विकास आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर दे रहा है।
2: पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था।
1: गोरखपुर जनपद के ग्राम जंगल तीनकोनिया के राम गणेश ने बताया कि पीएम जनमन योजना से उसके गांव की तस्वीर बदल गई है।
3: पीएम जनमन योजना के तहत लाभ मिला है, जो कि हमारे गांव में कभी न तो पानी मिलता था, न बिजली मिलता था, न तो राशन कार्ड मिलता था, न तो हम लोग को मकान मिलता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो उसमें हम लोग को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और बिजली आई।
1: यह योजना कमजोर आदिवासी समुदायों को भारत के विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: नौजवानन में नशा के आदती खत्म करे बदे देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन कई जा रहा है। विकसित भारत बदे 100 हफ्ता का नशा मुक्त युवा अभियान के तहत देश भर के नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चा के जरिए अभियान का संदेशा सोझे नौजवानन ले पहुंचावल जा रहा हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। आइए अब हम जान लेते हैं अपने शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत, पर उससे पहले जानते हैं खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सोनवानी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 29 जुलाई 2026 से लापता हैं। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, लंबा चेहरा, एकहरा मजबूत जिस्म, लंबे काले बाल, पहनावा हरे रंग का सूट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनीता देवी पत्नी दिनेश चेरो निवासी ग्राम मझौली थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र, जो दिनांक 9 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 25 वर्ष।

लंबाई 5 फीट लगभग, हुलिया सांवला रंग, गोल चेहरा, कद काठी औसत, पहनावा हरे रंग की साड़ी तथा पैर में सैंडल। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

आइए अब हम जान लेते हैं अपने शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 9:30 पे आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संघीय सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा रात्रि 8:15 पर। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल का समय होगा शाम 6:40 पर।

रात्रि 8:45 पे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 9 बजे सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: राम
1: राम
0: राम।
1: नखड़ू भैया, आपके भी राम राम हो।
0: राम राम। देखा हमन आज पंचायती में जुटल भाई जा।
1: बिल्कुल, तो जानल जाए पहले आपके अपन हालचाल और गांव के लोगन के बतावे का हाल
0: बिल्कुल
1: समाचार बा।
0: बता सा भाई। देखा हाल चाल तो ठीके बा। चारों तरफ जोन बारिश भइल ना ओकरे वजह से जोन हरियाली चारों तरफ फैलल बा उसे तो मन बहुत खुश
1: खुश
0: रहला।
1: बा। हाँ
0: लेकिन साथे साथे मौसम में थोड़ा सा जोन बदलाव हो गल ओकरे वजह से जोन देखा कहीं कहीं पानी भी जमा हो गल जिसे तमाम स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी झेल के पड़त बा। तो
1: बिल्कुल सही कहला है नखड़ू भैया। देखा मौसम के असर तो मतलब बदलाव जब होला तो तबीयत थोड़ा बहुत बिगड़बा करला, लेकिन खाली मौसम के ही दोष नहीं देहल जा सकेला। ओकरे साथ साथ अगर कहल जाए तो देखा स्वच्छता ना रखले पर या फिर साफ सफाई ना होखले पर भी देखा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेला। और जब गंदगी के वजह से तबीयत बिगड़ेला ना नखड़ू भैया, तो देखा एगो दूगो लोगन का नहीं बल्कि पूरा परिवार पूरा घर जोन बाकी बीमार पड़ जाला।
0: सही बात आप कहते हैं बता सब है ना। और देखा अगर हम लोगन के स्वस्थ रहक बा तो सब

0: सबसे पहले स्वच्छता अपनावल बहुत जरूरी बा।
1: बिल्कुल नखड़ू भैया, देखा स्वच्छता एक या 2 दिन रखला से ही काम नहीं बनी, बल्कि एक ही अपनी आदत में शामिल के जरूरी बा। और देखे आज ना इस स्वच्छता के लेके पूरी दुनिया में सफाई दिवस माने विश्व सफाई दिवस मनावल जा रहा बा।
0: बिल्कुल
1: और इ आंदोलन के शुरुआत नखड़ू भैया 2008 में ही शुरू हो गल एस्टोनिया से भइल रहल, जहाँ की देखे एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा लोग मिलके पूरा देश के कचरा से मुक्त कैले। और समय के साथ ई एगो विशाल वैश्विक आंदोलन बन गयल, जेमे की दुनिया के 190 से भी अधिक ना देश भाग लेलस। और एकर उद्देश्य बा भैया नखड़ू की कचरा के समस्या का सही निपटान होके प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलावल जाए और सफाई का सही महत्व के समझावल जाए।
0: बिल्कुल सही कहती हैं। और देखा साफ सुथरा वातावरण हमन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का जन पहली शर्त होला के पूरा कराला। और गंदगी कहीं पे भी देखा कोई के पसंद नहीं हो, बस व्यवहार में उसके लिए आने की जरूरत।
1: बिल्कुल काहे कि देखे उसे गंभीर बीमारी और संक्रमण देखा फैलाला भैया नखड़ू। और देखा कि ये संक्रमण और बीमारी से बचे के बाद तो कचरा का देखा सही जगह पे निस्तारण होखल बहुत जरूरी बा, मतलब कि कूड़ेदान में डाल जाए। और देखा होला का कि कचरा के जन गलत प्रबंधन होला ना, तो उसे देखा हम ही लोग नहीं धर नदी महासागर के भी देखा प्रदूषण से गुजरे के पड़ेगा और इसे देखा तमाम प्राकृतिक आपदा के भी झेले के पड़ेगा ना।
0: बिल्कुल एकदम सही बात कहते हैं। और हम लोगों का अपन जिम्मेदारी के समझे के पड़ी
1: बिल्कुल,
0: और संकल्प लेवे के पड़ी कि हम लोग आज से ही जोन कूड़ा बा उके कूड़ेदान में डालल जाए। छोट मोट अगर कोनो चीज बा इसे कहल जाला व्यवहार में लियाना जाला कि अरे इधर छोट सा कागज का टुकड़ा बा
1: कहीं
0: हर और फेंक दिया ऐसे का हो, लेकिन हर आदमी अगर यही सोच के साथ उतरी तो देखे चारों तरफ मतलब प्रदूषण फैल गई।
1: बिल्कुल
0: ये बात के हम उनके ध्यान में रखे पड़े।
1: बिल्कुल नखड़ू भैया वो कहावत है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरला, तो देखे सफाई से जैव विविधता और प्राकृतिक जो संतुलन बा देखे कर रक्षा होला। और देखिए आज 20 सितंबर का दिन इहे सबके अपने जिम्मेदारी के खातिर आगाह करल जाला, बतावल जाला कि पर्यावरण के स्वच्छ रखल खाली सरकार चाहे प्रशासन का ही काम नहीं बा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य बा। तो
0: बिल्कुल बतासा बहन, और यही विषय से संबंधित आज देखा जानकारी इससे जुड़ल बा कि ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जागरूकता। बाबूलाल भैया जो प्रगतिशील कृषक हैं उनसे अख्तर अली भैया बात बत कही कहले हैं।
1: और एक साथ साथ देखा मन फिर भी हम लोग शामिल करेला अपने पंचायती में, तो आज देखा अतवार का दिन है, तो आज हम लोग आदिवासी लोग गीत शामिल करेला जा अक्सर।
0: बिल्कुल
1: तो कतवारू राम उनके साथी का गावल हम लोग करमा सुनल जाये।
0: बिल्कुल
1: तो शुरुआत हो के जानकारी के जैसे हम लोग चर्चा कर ली है वही से जुड़ल जानकारी के।
0: बिल्कुल जानकारी सुनल जाये ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जागरूकता, बाबूलाल भैया जानकारी देवत हैं और मुन्ना भैया बात बत के लिए सुनल जाए
1: गुनल भी जाए।
2: पंचों देखें हम लोग तो हमेशा से ये सोचल जाला कि अपने आसपास साफ सफाई बनल रहे, और हम लोग गांव गिराव में रहेला तो जब भी देखें कोई तीज त्योहार आवेला, और हालांकि देखें अपन देश तो तीज त्योहार वाला ही है, बराबर कुछ ना कुछ लगले रहला, तो उस तीज त्योहार से पहले शुरुआत हो जाला अपन सफाई। और वैसे भी गांव गिराव में स्वच्छता बनल रहे के खातिर सभी लोग हमेशा से प्रयासरत रहेला। कहें कि देखें कई तरह के ऐसा जगह होला जैसे मान लें कुआं बा और हैंडपाइप बा, नहर बा, तालाब बा, यहाँ पर जोन बा की साफ सफाई जरूरी होला और एक अहमियत हम लोग हमेशा से जानत आउत ही जा। तो आज हम लोग बातचीत कर जाये रॉबर्टसन ब्लॉक के मानपुर के बाबूलाल जी से। बाबूलाल जी एक प्रगतिशील किसान हुआ, स्वच्छता के बारे में का सोचेलन आपसे हम लोग जानल जाये। तो बाबूलाल जी सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा, और स्वच्छता तो देखें हमेशा से जरूरी होला, एकर कोई तिथि या समय नहीं होला। सुबेरे से जब उठा जाला तब वहीं से अपने शरीर के स्वच्छता से लेके घर द्वार गांव गिराव के स्वच्छता के बारे में हमेशा से जागरूकता रहला और करल भी जाला। तो आज हम लोग बातचीत यही विषय पे कल जाये। तो बाबूलाल जी जैसे मान लें कि समय लोग अपने घरे के अंदर तो स्वच्छता अपना मिलन, लेकिन अपने घरे के बाहर जो है थोड़ा सा स्वच्छता के प्रति उनकर ध्यान कम रहला, तो एक बारे में आप का कहे चाहिए
3: भैया? देखें ये समय जैसे गांव का स्थिति ई बाय कि अभी चर्चा कैलन है कि अपन घर द्वार लोग स्वच्छ रखलन, भैया देखें गांव में अपन लोग घर द्वार भी स्वच्छ नहीं रख पौतन। भैया अशिक्षा के।

0: भाव भाई, जानकारी के भाव भाई। जैसे अपने गांव में रहता भी आता, जैसे गांव में बड़ा बड़ा लोगन के घर नहीं बाय,
1: जी
0: खपरेल का घर बाय, मड़ई के भाई कुछ लोगन का बाय, पक्का भी भैया बनल बात है भाई, ओकर बढ़िया से साफ सफाई नहीं भेल बाय। तो भैया जैसे अपने घर के साफ सुथरा बनावे के मतलब ओके उतना अभी लोगन के पास जागरूकता नहीं बा कि कैसे रहल जाए। जैसे कहीं एक तरफ कौड़ा बरले हन तो राखी पड़ल बा, ओना खाना बनौले बान, ओना भैया अगर बकरी ओकरी जैसे पलले बान तो एक आख के बकरी भी वही रख देवलन। तो भैया एकरे बदे जैसे और लोग तक कुछ अपन आगे बढ़त हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूक होत हैं, लेकिन भैया वही भी गांवन में जैसे बा ना कि उतना तरह से लोग नहीं, जैसे मक्खी रही हैं मच्छर रही हैं। तो लेकिन अब जैसे यार जैसे अभी 2-4 साल के बीच में यार काफी परिवर्तन भैया कुछ भैल है, जैसे कि अब लोगन के जैसे ये पता लगा लगल कि अगर गंदगी फैलावल जाए तो उसे मच्छर बहन बड़ी तेज, शाम के समय दिन में मक्खी बैठत है, तो भैया जौन मक्खी वहां बैठ के हमन के खाना पर भोजन पर बैठ के गिर जात तो वो भैया शरीर में चल जाता है, तो कीड़ा मकोड़ा या तमाम तरह के रोग बीमारी फैलत है। तो एकरे प्रति भैया अब जागरूकता भइल है, लेकिन अभी भी गांव में जरूरत है ओके जागरूक बनाओ बदे के।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बाबूलाल भाई, स्वच्छता के प्रिय नहीं होला, और स्वच्छता अगर नहीं रखल जाला तो ओकर नुकसान भी हम ही सब लोगों के भुगते के पड़ला। कहें कि जैसे घरे से जब आदमी बाहर निकलला तो वही वातावरण में रही, वह सड़क पर चली, वह नहर के किनारे जाई, वह तालाब में अपन स्नान करी या हैंड पाइप पर जाई, सामूहिक रूप से हर चीज के जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा बा तो हम सभी लोग करीला, तो हम लोगन के जिम्मेदारी भी सामूहिक रूप से बनला कि हर लोग एक बारे में सोचें। जैसे मान लें कि जहाँ हैंड पाइप बा या तालाब बा या कुआं बा, तो वहाँ के बारे में भी जरूरी होला कि ओकरे आसपास साफ सफाई बना के रखल जाए। तो अपने गाँव गिराव में लोग एकरे प्रति कितना जागरूक हुआ, का वो लोग एके मानेलन, कुछ साफ सफाई रखत हुआ अपने
0: भैया
1: आसपास।
0: अब तो देखे काफी जागरूकता हो ही गई बाय।
1: जी जी
0: पहले तो देखा भैया अपने पहले से अपने आपे में पहले से ढेर स्वच्छ लोग रहे लगलन।
1: हाँ
0: पहले
1: हाँ
0: भैया उतना साबुन वगैरह का भी व्यवस्था लोगन के नहीं रहल,
1: जी
0: पैसा से मतलब गरीब रहलन उतना नहीं, लेकिन अब भैया देखे सब लोग अपने पहले शरीर के स्वस्थ रखत हैं, एक बार घर द्वार के भी अब साफ सुथरा रखत हैं बढ़िया से ओके साफ सुथरा, पेड़ पौधा पत्ती वगैरह गली उनके सामने दरवाजा बा ओके बटोर देते हैं। और जैसे गली बा कुछ भैया जैसे गांव में बा जैसे कि दू दू चक्कर जने का द्वारा एक ही गली के सामने बाय, तो ये भैया ये नहीं बा कि इनकर कूड़ा उनके द्वारी पर उनकर कूड़ा। अब भैया सब लोग मिलजुल के अब थोड़ा सा जागरूकता भइल है, अब जाने लगलन है रोग बीमारी के बारे में। तो ऐसे भैया अब जैसे नहर वहर का एक सबसे बड़ी स्वच्छता के कारण भैया ये भल जैसे प्रधानमंत्री जी जो शौचालय वाला व्यवस्था बनवाए दलन
1: बिल्कुल
0: घर घर शौचालय वाला, एकरे से भैया बड़ी ही मतलब स्वच्छता के बारे में लोगन का जागरूकता भइल, और ये काफी मतलब उम्मीद स्वच्छ रहे में सहयोग भलई। कहें से भैया गांव गिराव में पहले लोग बाहर में शौच करे जात रहलन तो इधर उधर नहर पर चक्रोड के किनारे, तो ये भैया एकदम से ही कह लेवल के 100% बंद हो गए एकदम से। अब सबके के शौचालय भी बन गए, तो ऐसे गली मोहल्ला तालाब के किनारे पोखरी पोखरा ये सब भैया एकदम अब स्वच्छ हो, कहीं भी आदमी जा सकलन, कभी भी कहीं भी अब गंदगी भैया नहीं देखा था। तो ये शौचालय जोन बनल बा हर घर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, एकर भी बहुत बड़ा रोल बा स्वच्छ होए में भारत अपने अपने के देश के गांव में और सबके घरे में। और जैसे कि भैया रह गई बात जैसे कि खेत खलिहान, तो ये सब का भी बड़ा बढ़िया अब लोग प्रबंधन करे लगलन, जाने लगलन ओकरे बारे में कि कैसे स्वच्छ के रख के अपने के स्वच्छ रखल जाए, स्वस्थ रखल जाए, और हमन का पैसा भी बची का इस भैया बीमारी में बहुत ज्यादा पैसा लग जला। और खास तौर से ये समय जो बरसात का मौसम चलत बाय जमीन भैया ये बात की जैसे कहीं भी कूड़ा कचरा अगर इकट्ठा हो थोड़ा सा भी तो वो फिर पानी बरसत है, फफूंद लगत है, बीमारी लगत है, तो वहां सड़न पैदा होता है, वहां से दुर्गंध आवत है, और भैया जैसे वहां मक्खी मच्छर ये सब या द्वारे पर जैसे गड्ढी गड्ढा तनी मनी बा तो वहां भी मच्छर पैदा होलन। तो भैया ये सब ना अब गांव में सब लोग के जाने लगलन समझे लगलन, तब तो ओके हटा देते हैं बाहर फेंक देते हैं कूड़े के स्थान पर जहाँ सड़ावे के बाद वहां फेंक देते हैं। तो इस भैया काफी जानकारी लोगन की अब बढ़ल बाय, अब एकरे बारे में सोचत हैं जा और हर तरह से, और जैसे 10-20 लोग जैसे जहाँ गांव में इकट्ठा होते हैं फिर चर्चा भी बातचीत होता है कि कहीं न रहे दूसरे के भी समझाते हैं।

0: अब एक सब देखा भी है इसमें प्लास्टिक वाला भी अभियान, जिसे गांव में पहले से सामान लोग जैसे लेके आओ ने परचून के दुकान से सब्जी वाला, तो प्लास्टिक पर भी रोक लगल बाय, तो एपीर भैया भी नियंत्रण बाय। अब उतना प्लास्टिक पहले की तरह नहीं देखात हो गांवन में भी, नहीं तो पहले तो बहुत प्लास्टिक इधर उधर देखात रहा, तो प्लास्टिक बंद होए के वजह से प्लास्टिक भी भैया नहीं देखात बाय। इसे अब थोड़ा सा साफ सुथरा हमन का गाँव भी दिखत हो, अगल बगल का मोहल्ला भी, नहर चौराहा ये सब भैया साफ सुथरा देखात है अब।
1: बड़ा अच्छा बात उठौलें शौचालय वाली, कहें कि देखें एक मुहिम यार बीच चलल और वो मुहिम के ये असर देखे के मिलल कि अपने गांव देहात में अब लोग खुले में शौच नहीं करत हुआ और खुले में शौच मुक्त गांव भी बन गए है। तो ये बड़ा ही उपलब्धि बा हम लोगन के, कहें कि जोन भी अपने प्रधानमंत्री जी के ई अभियान रहल सभी लोग मिल करके जोन बाकी आगे अइले और ई कामयाबी भी मिलल हम लोगन के। बाबूलाल जी खेत खलियान से जुड़ले के नाते, खेती बाड़ी होखले के नाते, अपने किसान भाई लोगन से आप का कहे चाहिए चलत चलावत कि जहाँ भी जैसे उनकर खलिहान बा या फिर पशुशाला बा, ओके स्वच्छता रखल कितना जरूरी होला।
0: भैया देखे जैसे पशुशाला का बात आई है, तो भैया पहले तो देखे कच्चा घर रहल, तो कच्चा पशुअन के भी रहल, तो वहाँ भैया जैसे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाए, मिट्टी के जगह पर बंधाए पशु तो वहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा कर दे, एक एक दो दो फीट मतलब पैर उस पर धंस जाए, वहाँ गोबर भी निकाले में दिक्कत हो, कीचड़ रहे। लेकिन भैया अब जौन बा जागरूकता आई लोगन का, तो जेकरे के जौन व्यवस्था बा, कुछ लोग पटिया बिछा दिलन, कुछ लोग ईटा, कुछ लोग भैया पक्का फर्श बनवा दिले बन जा, तो भैया ओकर साफ सफाई एकदम बढ़िया रखत है, फर्श पर पानी गिरा देते हैं, सब गोबर वगैरह बह जाता हो। ओकरे बाद भी भैया जैसे कि जहाँ पशुपालन कैले बान, बकरी पालन कैले बान, वहाँ मच्छर और मक्खी जोन परेशान करेलन, वहाँ भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर देवलन, तो शाम के मच्छर नहीं लगते, दिने में मच्छी। और जमीन पर भी भैया जैसे अगर दवाई ववाई छिड़का जाता तो वहाँ किलनी अठवा जैसे ये सब कुछ परजीवी होलन, बाह्य परजीवी पशुअन बदे, ऊ सब पर भी अब लोगन के जागरूकता हो गई है, अब लोगन ओ तरह से काम करत हुअन और सब उनकर पशु भी स्वस्थ हैं, और जब पशु स्वस्थ भान भी तो अपनो स्वच्छ रही हन, काहे से उन्हीं के साथे साथे उनके भी काम करे को होला, तो वो अगर पशु स्वस्थ भान तो उनको स्वस्थ रही हन, और भैया उनकर जो बीमारी में पैसा लगेला वो भी अब पैसा उनकर व्यर्थ नहीं जाता, वो भी बचत है। तो ये तरह से भैया किसान भैया लोगों के भी ये जानकारी और रेडियो के माध्यम से ये भी कहल जाए कि अभी भैया देखा एकरे बारे में बहुत कुछ जाने के जरूरत पाए, और सब लोग मिल करके स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, काहे से कि भैया स्वस्थ रहियन तो उनकर भैया पैसा भी बची और आगे बढ़ियन।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो पंचो देखें आप रहना रावर सिंह ब्लॉक के मानपुर से एक प्रगतिशील किसान बाबूलाल जी, और आपके विचार हम लोग जानल गए स्वच्छता के बारे में, गांव गिराओं की स्वच्छता के बारे में, और उम्मीद बाकी आज के बातचीत से और भी अपने पंच भाई अपने गांव गिराओं के स्वच्छ रखे के बारे में सोचे हैं। और बाबूलाल जी आज आप आकाशवाणी के माध्यम से इतना बढ़िया बातचीत के लिए, एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
3: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
2: RBI कहता है जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए।
4: बता सब बहन।
5: हाँ नखड़ भैया।
4: देखो संदेश से पहले ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर बाबूलाल जो प्रगतिशील कृषक रहना, उनसे अख्तर अली भैया बात बात कही करत रहना, और देखे एक चीज कहना कि गांव में भी जागरूकता धीरे धीरे बढ़त बा और लोग स्वच्छता के अपनावत हैं, अपने व्यवहार में ले आनत हैं, तो देखे बड़ी खुशी की बात बा। और जे हम तो और पंच भाई लोगों से जे ऐसे अछूता बा, मतलब जे थोड़ा जागरूक रहनी, उनसे हम यह कहब कि स्वच्छता हर तरह से फायदा पहुंचा वाला चीज बा, ओके अपने व्यवहार में ले आना।
5: बिल्कुल नखड़ू भैया। और देखे जौन भी जागरूकता के बात कर रहा, तो देखा अपन पंचायती एक ऐसा मंच है जहाँ हर तरह के जानकारी हम लोगन तक पहुँचेला और पहुँचावेला जा, जैसे वो लोगन फायदा भी उठावे ले, अगर कोनो नुकसानी हो रहा बा तो एक जान करके सुन करके जागरूक हो जाले।
4: बिल्कुल।
5: तो देखे इतना बढ़िया जानकारी जब अपन बाबूलाल भैया देलन है, तो धन्यवाद तो बड़े बनेला ना।
4: बिल्कुल बिल्कुल, कहे नहीं तो देखा कतवारू राम और साथी लोगन का गावल एक कर्मा बा, तो बिना देर के लिए सुन ली
5: एकदम भैया।

0: हाँ नकुल भैया,
1: देखा अपने अंचल का समृद्ध एक तरह का आदिवासी गीत रहा है
0: बिल्कुल जंगल
1: जोन।
0: पहाड़ के इलाका में अपन जोन भी प्रकृति से जुड़ल इस सब कर्मा गीत होला ना कहीं लोगन के दुख में सहयोग रहेला और सुख में खुशी के अनुभूति करावेला।
1: बिल्कुल देखा अपने लोक संस्कृति और परंपरा से जुड़ल मनमोहक कर्मा जोन रहा
0: बिल्कुल
1: है। कर्मा गीत में देखा हमारे लोक परंपरा प्रकृति के प्रति प्रेम सामूहिकता और जीवन का जोन खुशी का बात कहने आप और एकर एक तरह से सुंदर झलक दिखाई दे वाला
0: बिल्कुल
1: और ऐसा लोकगीत जोन हमारे सांस्कृतिक विरासत के रूप में संजो के रखे के चाहिए हमन के
0: बिल्कुल
1: और ताकि आवे वाली जोन पीढ़ी बा वो भी एक ये संगीत के ये आदिवासी गीत के सुन सके समझ सके।
0: आनंद ले सके।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल नकड़ू भैया, और प्रकृति के सुंदर ये लोकगीत के हम लोगन संजोत हैं, लेकिन प्रकृति में जोन हम लोगन कभी कभी कुछ ऐसा काम करेला जोन के नुकसान दे होला, जिसन के अभी बात करल जाता सफाई स्वच्छता और अच्छी आदत के बारे में। तो देखा कहीं ना कहीं हम लोगन अपने आदत में जोन प्लास्टिक का भैया उपयोग करत हैं, ये तो सही बात बा भैया कि प्लास्टिक अपने जीवन का एगो महत्वपूर्ण हिस्सा हो गल बा, महत्वपूर्ण अंग हो गल बा। लेकिन जब भी हम लोगन बाजारे जाएला, जैसे कबो मान ला जैसे भैया कि नून तेल कबो घट गल तो प्लास्टिक का थैली में लेके आईला,
1: सही
0: तो
1: बात कह।
0: कोशिश करल जाए भैया कि एकर ना प्रयोग करके, बल्कि घर से जूट का थैला होके या फिर कपड़ा का थैला होके ओके ले जाएल जाए और प्लास्टिक के कहल जाए नहीं। अच्छा
1: बिल्कुल
0: भैया देखा चलो कबो कबो तनी मनी घरे में प्लास्टिक आइयो गल तो होला का कि घरे में रसोई में से कूड़ा निकला तो लोग प्लास्टिक में बांध के बाहर फेंक देहलस, तो उसे कहा होला कि भैया देखा खाना बांध के फेंक देहलस, तो उसे कहा होला कि देखा गोरु चौवन के हाथ तबा नहीं भैया कि वो अपन खोल के बढ़िया से तब ओमे खाना खाए और प्लास्टिक छोड़ दे।
1: बिल्कुल उनके तो भूख लगल रहला और भूख
0: बिल्कुल
1: पे जौन भी मिला लोग तुरंत खा लेना और फिर
0: बिल्कुल
1: बाद में मतलब ऐसा होला कि उनके स्वास्थ्य बदे बहुत हानिकारक रहला कभी कभी तो खत्म भी हो जाना।
0: बिल्कुल भैया
1: और देखा हमन के जोन आदत के बात आप कहनी कि हम लोग बाजारे बाजारे जाइला और पॉलिथीन में कुछ सामान खरीद लेला और वो सामान खरीदले के बाद कुछ मिनट में ही होके फेंक दहिला जा।
0: बिल्कुल
1: ऐसे देखा हमन के जोन पर्यावरण बा ये तो प्रदूषित होते बा
0: धरती माई
1: और देखा जोन भी प्लास्टिक बा कचरा नाली में जमा होता जल स्रोत जोन बा वो प्रदूषित होते हैं
0: बिल्कुल
1: पशु पक्षियन बदे खतरा बा। इस समस्या का समाधान देखो देखा केवल प्लास्टिक के प्रयोग करके फेंकले में नहीं बल्कि एकर उपयोग कम से कम करल जाए अपने व्यवहार में इसी लिए आना जाए कि जब भी हम बाजारे जाए तभी एक जरूर झोला ले लही
0: बिल्कुल
1: और उस झोला में ही सामान लही और अगर दुकानदार जहां से भी हम सामान खरीदे थे ओके अगर दुकानदार के चूंकि इतना समय बीत गल बा प्लास्टिक इस्तेमाल करत करत के उ
0: आदि हो गल
1: आदत
0: बा
1: हो गल बा
0: सके
1: कि खुद भी उ सामान प्लास्टिक में देवे के प्रयास कराला
0: बिल्कुल
1: तो उस समय हमें टोके के पड़ी के भैया प्लास्टिक में हमें सामान ना चाहिए हमें झोला बा झोला में दे दा। तो
0: बिल्कुल
1: एक तरह से एक व्यवहार में भी उसी जब आवे लगी तो धीरे धीरे कहकर प्लास्टिक के इस्तेमाल अपने आप खत्म हो जाए।
0: बात तो सही बा नखड़ू भैया, लेकिन देखें कभी कभी का होला कि जब आदत में शामिल बा तो इतना जल्दी बिल्कुल ही खत्म नहीं होए वाला बा। लेकिन अगर हम ले भी आवत है भैया कि हम घरे में प्लास्टिक लेके आवत है, तो कि कोशिश करल जाए कि फिर से होकर इस्तेमाल होके और फेंकल नहीं जाए, कहें कि देखा फेंकले से तमाम तरह का जैसे धरती धरती बंजर हो जाला भाई, देखा जैसन की कहला कि नदी नाला में जब फंस जाला प्लास्टिक तो नदी का जो पानी का बहाव बा चाहे जल स्रोत बा वो रुक जाला, कहीं ना कहीं अपन पशु चौवा खा लेलन तो भाई मृत्यु तक हो जाला। तो कई सारी छोटी छोटी चीज बा भैया कि प्लास्टिक के प्रयोग से नुकसान बहुत ज्यादा बा, फायदा बहुत कम बा।
1: बिल्कुल हमन के याद रखे के चाहिए कि पर्यावरण के रक्षा केवल सरकार या कोनो संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि
0: बिल्कुल
1: हम सबका बहुत बड़ा योगदान एमन हो सकला। अगर हम हर परिवार रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक उपयोग थोड़ा थोड़ा कम करें तो मिलकर हम अपने गांव शहर और देश के स्वच्छ बना सकीला।
0: आजकल तो
1: और
0: भैया प्लास्टिक का देखा ऐसा ऐसा गुलदस्ता बनत बा कि देख के तू चिन्हे ना पाईबा कि मतलब ये प्लास्टिक से बनावल बा।
1: बिल्कुल
0: तो देखा एकर जैसे कहल जाए ना कबाड़ से जुगाड़, तो प्लास्टिक अगर औतो बा घर में तो एकर ऐसा जुगाड़ करल जाए कि भैया घर का शोभा बने न कि घर का कचरा बने। तो भैया देखा अगर हम लोग इस चीज देखा तमाम तरह के जैसे कि युवा कौशल में विद्या में सिखावल भी जाला अपने लड़की लोगन के लड़कन लोगन के अलग अलग तरीके से, तो एक प्लास्टिक का देखा गुलदस्ता बनला और बहुत सारा सुंदर सुंदर चीज ऐसा बनला भैया कि तू पते ना कर पैबा कि सिंगल युग जोन के

0: थैली नियर जन होला उ प्लास्टिक के प्रयोग से बनल है। तो भैया देखा एक चीज का कई विकल्प बा, बस ये कोशिश करे के बा कि हम लोग के वातावरण के प्रदूषित करे के ना बाहर फेंकल जाए, पशुअन के नुकसान पहुंचावे के ना बाहर फेंकल जाए।
1: और देखा पंच भाई लोग सोचे जरूर हुई है, मन में जरूरी बात चलत है कि प्लास्टिक के बदले तो मना करत है,
0: हाँ
1: लेकिन बहुत सारा सामान जो खुद प्लास्टिक में से दवाई हो गया
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा जरूरतमंद चीज जो के प्लास्टिक में रखा बहुत जरूरी बा,
0: बहुत जरूरी
1: ओके देखा तो मना नहीं करल जा सके, लेकिन जो हम लोग व्यवहार में नित्य प्रतिदिन हम लोग इस्तेमाल में लियाना थे प्लास्टिक सामान लियाने बदे ओके जरूर कम कर सकीला जा।
0: बिल्कुल
1: और देखा तमाम नियम कानून भी सरकार के द्वारा बनावल गए बा, लेकिन वो नियम कानून बनौले से अगर हम सोची कि अगर नियम कानून से बच कर हम एक प्रयोग कर लें तो देखा हमरे ऊपर बा कि हम उकर ज्यादा से ज्यादा नियम के अनुसार चल पाईला या ना चल पाईला।
0: बिल्कुल
1: तो देखा नियम के अनुसार चलने में ही देखा एक तरह से पर्यावरण भी हमन का बची और जोन प्लास्टिक बा वो भी उकर प्रयोग भी कम हुई और अपन पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रही।
0: बिल्कुल, तो यही संकल्प के साथ कि भैया प्लास्टिक को कहे ना और घर से थैला ले जा, मतलब बाजारे में सामान ले आओ खातिन के, और यही के साथ आज के पंचायती समेटे के भी बखत हो रहल बा। तो अगले पंचायती में अपने पंच भैया लोगन की नई जानकारी और मन फिर के साथ फिर मिलल जाई। तो चले के
1: सब पंचन के
0: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत FM 102.7 पर। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: बचवा बोला जय हिंद।
1: बचवा लोग देखा दीदी जुट गल बाया, और बचवा लोगन देखा कुछ बचवा लोग तो बड़ी साफ सुथरा कपड़ा पहनले बाया, लेकिन कुछ बचवा लोग देखा सीधे खेल के मैदान से सीधे अपने यहाँ अपने कार्यक्रम में पहुंचल बाया, तो कहीं उनके हाथे में मट्टी लगल बा, कहीं पैर में लगल बा। तो देखा बचवा लोगन हम अपने हाथ पैर के साफ रखीला, साफ कपड़ा पहनीला और अपने घर के साफ रखीला, लेकिन आप सभी का सोचले हैं कि हमार जो स्वभाव बा, हमार विचार बा, वो भी स्वच्छ रह के चाहिए।
0: बिल्कुल नखड़ू भैया, देखा बचवा बचवा होवन, बचवा बूढ़ ना होवन की मतलब इतना उनके अंदर समझदारी हो जाए, और ये तो उम्र बा भैया खेले हंसे के। लेकिन अब देखा संजा होगल तो साफ सफाई के बात बिल्कुल बनेला, और स्वच्छता देखल खाली हम लोगन के घरे स्कूल और आसपास के सफाई का ना ही है नखड़ू भैया। असली स्वच्छता देखा तब होला जब हमार स्वभाव भी अच्छा होए, हमार संस्कार भी अच्छा होए, और हम अक्सर देखा देखा कहिला ना कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। बाकी देखा एक स्वच्छ भारत समाज बदेना जरूरी बा कि हम अपने व्यवहार में भी स्वच्छता के लिए आई।
1: कुछ लोग हमन जिसे जौन बचवा लोगन भी शामिल है,
0: हाँ।
1: हम जौन कचरा कूड़ेदान में नहीं फेंकीला, इधर उधर फेंक देला, और ये कहा जाला कि अरे ये तो छोट सा कागज का टुकड़ा बा, इकरे कागज का टुकड़ा फैले से का गंदगी फैली। देखा सफाई का शुरुआत छोटे छोटे कदम से ही होला, अगर हर व्यक्ति यह सोचे लगे कि एक ही व्यक्ति अगर साफ सफाई रखे तो देखे चारों तरफ स्वच्छता और साफ सफाई के बाद केवल सपना रह जाए।
0: बिल्कुल नखड़ू भैया देखा है गो है ना कि करत करत अभ्यास जड़मती होते सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो भैया देखा जब छोट छोट बात के अगर हम लोगों ध्यान नहीं दे तो मतलब जो संकल्प और जो हम लोगों का लक्ष्य बा पूरा नहीं हो पाई।

0: देखा इस स्वभाव स्वच्छता और अच्छा आदत के शपथ जीवन का हिस्सा बनावे की जरूरत बा। स्वभाव स्वच्छता का मतलब ये है कि देखा हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में स्वच्छ और जिम्मेदार आदत हम लोगन के अपनावे के चाहिए। कूड़ा हमेशा जोन बाकी कूड़ेदान में डाल जाए। देखा कूड़ा दो तरह का होला, एक सूखा कूड़ा होला, एगो गीला कचरा माने कूड़ा होला। तो दोनों अलग अलग जगह कर ओकर कूड़ेदान में प्रयोग करे के चाहिए और अपने घर के आस पास साफ सफाई रखल जाए। शौचालय से जोन बाकी के साफ सफाई रखल जाए। भोजन से पहले और शौचालय के बाद हाथ के जरूर साबुन और पानी से धोवे। और देखें भैया पानी भी व्यर्थ ना बहावे के चाहिए। काहे कि देखा यो एक अपने प्राकृतिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सार्वजनिक स्थान के गंदा ना करल जाए। पेड़ पौधा और प्रकृति का रक्षा करल बहुत जरूरी बा।
1: बिल्कुल, अगर हम रोज एक छोट छोट बातन पर ध्यान रखल जाए तो स्वच्छता हमारे आदत में आई जाये। और देखा स्वच्छता के जब बात होत बा तो संस्कार स्वच्छता भी बहुत जरूरी बा। यानी हमार विचार भाषा और व्यवहार में अच्छाई होवे के चाहिए। दूसरे के सम्मान करे से ही देखा अपने के भी सम्मान मिली। छोट छोट अगर जेबाओ के स्नेह करल जाए और जरूरतमंद के मदद करल जाए।
0: बिल्कुल,
1: और सच बोलने के प्रयास करल जाए। जान बुझ के कोई के दुख न देवल जाए। सब इस सब अच्छा संस्कार की श्रेणी में आवला।
0: देखे भैया ये बात तो सही कहला। कुछ बचवा लोग न अपने जन जैसे दादा हुआ चाहे नाना हुआ चाहे चच्चा वच्चा के साथे ऐसा हंस खेल मत करेलन कि भैया देखा उनके परेशानी हो रहल बा। लेकिन बचवा उनके कपारे पर ठोपी मार के भाग जाई हैं। कबो कबो का करेला कि पीछे से ऐसे ढकेल के भाग जाई हैं। तो बचवन लोगन का ये देखा जन्म सिद्ध अधिकार और शरारत करना। बाकी देखा केहू के परेशानी में डाल के केहू के नुकसान में डाल करके खुद आनंदित भय इस संस्कार के श्रेणी में नहीं आवेला। देखा अच्छा संस्कार खाली किताब से ही नहीं सीखल जा सकेला, बल्कि देखा वो हमारे व्यवहार में भी दिखाए के चाहिए। यानी हमारे कहे का मतलब ये बा कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहती भैया वह व्यवहार हम लोगन के दूसरे के प्रति रखा बहुत जरूरी बा। और देखे स्वच्छता हमारे भाषा में भी होके के चाहिए। कभी कभी होला कि बचपन लोगन देखा गाली का शब्द का प्रयोग करला, अपशब्द बोलला, झूठ फैलावलन, माने अपन फायदा देखे बने दूसरे से झूठ जाके बोल दिए अपने माई से चाहे बाबू से कुछो माई से कुछो। तो आपस में माई बाबू भिड़ गए बचवा के फायदा माने हो गए भैया पैसा ले लेना गए ना टाफी लेके खा के आई ना और केहू से कुछ केहू से कुछ। देखा ई काम नहीं करे के चाहिए। और दूसरा चीज कि केहू का मजाक उड़ावल भी अच्छा संस्कार नहीं है।
1: बिल्कुल, और देखा एक जिम्मेदारी अपने माता पिता पर भी होला कि बचवा लोगन के कैसे संस्कार दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम चूंकि बचवा लोगन के बीच में जब बैठल भाई तो हम एक चीज कहा कि अगर बचवा लोगन अगर कुछ शब्द का प्रयोग करें जैसे कृपया शब्द बा, धन्यवाद बा, या माफ करें,
0: हाथ जोड़े का क्रिया बा,
1: और आप जिसे कोई से मिलत हैं तो जरूर ये बात का प्रयोग कर सके ना कि आप कैसन हैं। जैसा जैसा जो छोट शब्द बाए वो अपने व्यवहार में अगर लेनी है तो आपके सुंदर ही बनाई आपके जो व्यवहार बा भाषा बा एक ही सुंदर बनाए।
0: बिल्कुल, एगो सभ्य मतलब बचवा के रूप में आपके जोड़ल जाई। और देखिए भैया कि चाहे बचवा हो चाहे छात्र के बात अगर कर जाए तो उनके जीवन में अनुशासन का भी बहुत महत्व है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो देखिए हम लोगों के संस्कार बहुत जरूरी बा। और संस्कार स्वच्छता स्वभाव तीनों देखा कहीं ना कहीं जुड़ल बा एक दूसरे से।
1: और आज देखा यही से जुड़ल जानकारी भी हमन के बीच में बा बचवा लोगन बदे स्काउट्स और गाइड्स का स्वच्छता से गहरा और पुराना संबंध। सत्य नारायण कन्नौजिया जो जिला स्काउट कमिश्नर है उनसे
0: अच्छा।
1: जगत नारायण भैया बात बत कही करत है। हम तो कभी सबसे पहले जानकारी सुनल जाए फिर बचवा लोगन का गावल बाल गीत भी सुनल जाए।
0: वाह भैया, तो जानकारी सुनल जाए पहले।
2: श्रोताओं, जैसा कि हम सब सुनते हैं कि अनुशासन देश को महान बनाता है, लेकिन इसका शुरुआत कहीं न कहीं से अपने घर से होता है। घर से पूरे गांव का, गांव से ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, तब देश के में जाया जाता है। लेकिन इसका शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति से होती है। सर्वांगीण विकास के क्रम में व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रशिक्षण लेना होता है, शिक्षित होना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुशासित होने के लिए, किसी भी चीज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए स्काउट कितना कारगर है, इस विषयों पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी

0: जैसा कि स्काउटिंग की जहां तक बात आई
1: जी,
0: इसमें जो हम लोगों का समय सारणी निर्धारित होता है तो प्रत्येक दिन श्रमदान का एक कार्यक्रम होता है।
1: जी,
0: उस श्रमदान में हम विद्यालय में चूंकि कैंप होता है तो वहां पे हम कैसे श्रमदान करते, बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं दो लाइनों में, उनके हाथ में बोरा थैला होता है और लाइन से बच्चे जाते हैं, रास्ते में जो भी कचड़ा की तरह जो पॉलीथीन है समाप्त तो नहीं होता उन सबको मैं एकत्रित करवाता हूँ, बोतलें हैं उनको एकत्रित करवाता हूँ उनको एकत्रित। इसके बाद शाम के समय जब बच्चे समय मिलता है खेलने का उस समय भी हम हाइक की तरह बाहर बच्चों को ले जाते हैं, रास्ते में जहाँ हैंडपम्प होता है वहाँ पे हम लोग साफ सफाई का काम करवाते हैं, वहाँ पे जो गंदा पानी होता है उसको हम निष्कासित करवा देते हैं और जो पानी एकत्रित रहता है उसमें हम लोग फिनाइल या मिट्टी का तेल डाल देते हैं जिससे कि मच्छर उसमें पैदा ना हो और लोगों को जो है बीमारी और बुखार जो मच्छर से होता है वो नहीं होता है।
1: चूँकि जो भी हम सब करते हैं
0: जी
1: उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है,
0: जी
1: तो ये जो फिनाइल डालना, साफ सफाई करना, या ये तो हुआ कि जो है कि अपने विद्यालय का सफाई हो रहा है, अपने परिसर की सफाई की जा रही है,
0: जी
1: तो क्या इस माध्यम से बच्चों के अंदर कुछ विशेष डालने के अपेक्षा होती है क्या?
0: बिल्कुल,
1: जी
0: आप जब जैसे भी 15 अगस्त था तो कुछ बच्चों जब 14 अगस्त को बच्चों को निर्देश दिया गया कि आप जब घर जाएंगे तो रास्ते की झाड़ी को साफ करते हुए जाएंगे और अपने गांव के प्रधान से एक प्रमाण पत्र लेंगे कि मैंने ये रास्ते साफ किए हैं, मैंने पानी के जहां भरते हैं लोग वहां पे हमने श्रमदान किया है, सफाई की है, तो एक प्रमाण पत्र लेकर के आते हैं। और दूसरे दिन हम लोग जब प्रभात फेरी निकालते हैं तो देखते हैं किस बच्चे की सफाई या किस रास्ते की सफाई नहीं हुई है, तो वे भी जो है हम साफ सफाई करते हुए जाते हैं और उस दिन हम बच्चों से कुछ ऐसे हथियार मंगा लेते हैं, औजार, जिससे कि रास्ते की झाड़ियों की सफाई कटाई हम कर सकें क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है, झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं तो उस समय भी रास्ते गंदे हो जाते हैं तो हम उसकी भी सफाई करवा लेते हैं।
1: तो इसका उद्देश्य केवल सफाई कराना है या बच्चों के जीवन में सफाई के प्रति रुचि उत्पन्न हो?
0: देखिए, इसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान समय में जैसा हम करते हैं वो बच्चे जीवन में उसी कार्य को करते हैं और वो सीख लेते हैं कि नहीं, मुझे घर की सफाई ही नहीं बल्कि समाज की जो कुरीतियां हैं उनकी भी मुझे सफाई करनी है।
1: जी,
0: उन,
1: जी, जी।
0: उन, उनके अंदर जैसे दहेज प्रथा है आपका और झाड़फूंक जो अंधविश्वास है और बाल विवाह है ये सब जो है स्वच्छता में आता है,
1: जी,
0: ये
1: जी, जी।
0: सब हम बच्चों को नाटक गीत के माध्यम से उनको सिखाते हैं। कहा भी जाता है कि 100 रोगों की एक दवाई साफ सफाई, साफ सफाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब तक
1: बिल्कुल।
0: हम साफ, अभी वर्तमान समय में सरकार ने भी ऐसी योजना चालू की है कि अस्पतालों में आप देखेंगे अब गंदगी नाम की चीज नहीं है, विद्यालयों में भी आप देखेंगे गंदगी नहीं है, अब जो भी कार्यालय में जा रहा हूं वहां पे कोई गंदगी नहीं है। आपके यहां भी मैं देख रहा हूं कि जो स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत साफ सफाई पहले से है और एक सरकार ने योजना ही बना दी है, तो बहुत अच्छा लगा इस पे हम सब काम कर रहे हैं।
1: जी जी जी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यवहार में होना चाहिए स्वच्छता, ये भी उद्देश्य होता है। और स्काउट निश्चित रूप से चूँकि बहुत संकेतक चिन्ह भी उसमें बनाए जाते हैं कि हम व्यक्ति कहीं जा रहा है, आगे आने वाले हमारे
0: स्काउट
1: दोस्त,
0: एक जो है फौजी शब्द है।
1: हाँ,
0: जब एक फौज आगे को बढ़ती है तो उसका एक लीडर जाता है जिसको हम एडवांस पार्टी कहते हैं, वो एक सांकेतिक चिन्ह बनाते हुए जाता है और उसी संकेत के आधार पर वो पहले चली जाती है हमारी टीम, जैसे कि फौज का जो आगे का जो हमारा लीडर होगा पहले पता करेगा कि हमारा दुश्मन किस प्रकार का है और रास्ते में पत्र भी जगह जगह पे गुप्त रूप से छुपा देते हैं और वो पत्र का संकेत भी होता है कहाँ पे पत्र छिपा हुआ है, तो पीछे की जो टोली आती है वह जो उन पत्रों को पढ़ती है और फिर उसी जगह रख देती है, फिर उसके पीछे की जो अंतिम टोली होगा वो संकेतों को मिटाएगा, पत्र को जमा करेगा तब जाएगा, जिससे कि जो पीछे जो हमारा जो दुश्मन होगा उस संकेत के माध्यम से हमारे पास न पहुंच पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और दुश्मन जो सेना होती है उसको जानकारी भी न हो पाए कि हम कहां कैसे जाए, गुप्तचर चीज है।
1: चूंकि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाई इसलिए भी इस समय करना चाह रहा है, हालांकि शिक्षित होने के लिए किया जाना ज्यादा न्यायोचित है, पर यह अपेक्षा लोग करता है कि मैं पढ़ाई करूं तो हमें नौकरी मिले, तो इस उद्देश्य से जाता है लोग। लेकिन

0: ये स्काउट का प्रशिक्षण लेने के बाद इसमें कुछ वेट भी मिलता है?
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि जब बच्चे तृतीय सोपान, राष्ट्र पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं तो ये तृतीय सोपान का 2 नंबर, राष्ट्र पुरस्कार का 5 नंबर और राष्ट्रपति पुरस्कार का 10 नंबर का वेटेज मिलता है। अभी रेलवे में वैकेंसी आई थी, उसमें भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्काउट वालों की एक अलग कोटा निर्धारित किया जाता है कि इतने बच्चे स्काउट वाले जो है इसमें आवेदन करेंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी। अभी राजस्थान में प्रत्येक विद्यालयों में वहाँ पे स्काउट के एक अध्यापक है, उनको पूरा वेतन दिया जाता है और वहाँ पे जो लोग बीटेक करने जाते हैं उनकी फीस भी मात्र 10% लिया जाता है, वेटेज वहाँ दिया जाता है। और इसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जो बच्चे जाते हैं वहाँ भी उनको वेटेज दिया जाता है।
0: तो स्काउट में प्रशिक्षण लेने के लिए, भागीदारी करने के लिए कौन कौन से शर्त पूरा करना पड़ता है विद्यार्थियों को?
1: देखिए, स्काउटिंग में शर्त जो है वह 5 से 10 साल का बच्चा कब बुलबुल में आता है और 10 से 16 साल का बच्चा स्काउट होता है जो विद्यालय में अध्ययनरत होता है। जो बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत नहीं रहते हैं उनको ओपन दल होता है, उसमें अपना वो जो है प्रवेश करता है, पंजीकरण कराता है, BSG UID बनवाता है और फिर वो भी आगे बढ़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने वाला बच्चा ही स्काउटिंग करे। हम अच्छा, तो दुकानदारों को, किसानों को भी यूनिट लीडर ग्रुप में ट्रेनिंग देते हैं।
0: जी, कुल मिलाकर के अनुशासित जीवन जीने के एक कला है,
1: कला है।
0: तो इसके लिए जो है कि प्रशिक्षण दिया जाना होता है। तो मानव जीवन में अनुशासन कितना महत्व रखता है?
1: देखिए, मैं एक अध्यापक रहा हूँ, अनुशासन एक जगह नहीं, प्रत्येक जगह अनुशासन। जिन्होंने अनुशासन खोजा अपना समय को बर्बाद किया। समय जो है एक निर्धारित है कि हमें एक उचित समय के लिए काम और काम के लिए समय एक निर्धारित है कि हमें इस समय पे यह काम करना है तो करना है। घंटी लगी उससे पहले 1 मिनट मुझे जो वहां पे पहुंचना होता है क्लास के बाहर, ताकि सर निकले मैं अंदर जाऊं। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साफ सफाई के दौरान प्लास्टिक का जिक्र किए,
1: हाँ,
0: तो ये प्लास्टिक किस प्रकार हानिकारक है जिसको सर, साफ करने के लिए आप लोग ज्यादा प्रेरित करते हैं?
1: ये प्लास्टिक जो है ये कभी समाप्त तो नहीं हो रहा है। सरकार को भी इसके जगह पे कागज के थैले का प्रयोग करवाने की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की जो जलाते हैं वो भी नुकसान देता है, उसके भी नाक में हवा जाती है तो मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो प्लास्टिक को तो पूरा प्रतिबंध करना चाहिए गवर्नमेंट को।
0: जी जी जी।
1: जिससे कि, और हम जो आजकल का जीवन जी रहे हैं, खेत भी हमारा जो है स्वच्छ नहीं है, उसमें भी हम केमिकल रासायनिक खाद डाल रहे हैं।
0: जी, आम जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं?
1: आम जनता से मैं यही कहूंगा कि गौ पालन करें
0: जी
1: और भैंस पालन करें, जिससे कि उनके खादों गोबर को खेतों में डालें और रासायनिक खाद का प्रयोग हम कम करें, जिससे कि हम सब लोग जो है बिना खाद के खाना खाएं तो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होगा।
0: श्रोताओं, देखें अभी बातचीत हो रही थी स्वच्छता के बारे में और इसके लिए स्काउटिंग कितना कारगर है, इस पर सुझाव दे रहे थे सत्यनारायण कनौजिया जी, जो सेवानिवृत्त अध्यापक भी रहे हैं और जिला कमिश्नर स्काउट जनपद सोनभद्र से बातचीत हो रही थी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: बता सा बहन।
2: हाँ रखड़ू भैया,
1: देखा कितना बढ़िया जानकारी रहा। बचवा लोग भी देखा रुचि के साथ सुनत रहना, और उनको रो देखा कुछ कुछ बचवा लोग उनको मनसा रहा ना कि स्काउट गाइड में हम भी शामिल हुए।
2: बिल्कुल, मैंने एगो पुलिस के जैसा उनका अनुभव होला कि एकदम टोपी रही और पूरा सीटी रही और जूता मोजा साफ सुथरा से पहनिए तो कितना अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल, बात सही बा। शौक अगर पूरा करेगा बाद बचवा लोगन के
2: शुरुआती दौर पे
1: के साथ
2: पढ़ाई
1: के साथ साथ स्काउट गाइड के भी करे के पड़ी।
2: बिल्कुल,
1: जानकारी रहा। और देखो बसवा लोगन भी काफी देर से इंतजार करते हैं।

0: बारी का भाई।
1: तो उनकर बारी देखा आ गई और स्वच्छता से ही जुड़ल गीत बा उनकर तो सुनल जाए।
0: बिल्कुल।
2: वैसे तो स्वच्छता हमारे प्रतिदिन के जीवन शैली में शामिल रहता ही है, परंतु स्वच्छता ही सेवा है। इस देशव्यापी अभियान के अंतर्गत हम बच्चों का भी कुछ योगदान अवश्य रहना चाहिए। तो आइए हम सब इस गीत के माध्यम से एक संदेश देते हैं।

हम बच्चे हैं वीर सिपाही, दुश्मन से टकराते हैं। कूड़ा करकट और गंदगी हमें देख घबराते हैं। कूड़ा करकट

देश अभियान में। अभी कुछ दिनों बाद विजयदशमी का त्योहार आने वाला है और यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। आइए इस त्योहार पर रावण रूपी गंदगी को साफ करने के लिए यह एक संदेश जन जन तक फैलाते हैं।

0: स्वच्छ सुंदर गांव बना के अपने देश को स्वर्ग बनाना है, अपने देश को स्वर्ग बनाना है। जय हिंद, जय भारत।
1: स्वच्छ भारत अभियान में हम बच्चों का भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहना चाहिए। इसलिए
2: हम सिद्धि, हम रिद्धि,
3: हम देवंशी।

0: बता सब है।
1: हाँ नकड़ू भैया।
0: देखो बचवा लोगन का गाँव वाली बाल गीत रहा हा, और चलत चलत बचवा लोगन से हम तो यह कहब कि पढ़ाई लिखाई करें बड़े ध्यान से मन से, लेकिन साथ में अनुशासित तरीके से करें,
1: बिल्कुल
0: और अनुशासन का पालन कैले से ही अपने समाज में व्यवहार और जो जिम्मेदारी बा सही तरीके से निभाए पाई हैं।
1: बिल्कुल अनकड़ू भैया। देखे अनुशासन के बात ऐसे समझल जा सकेला कि देखे घरे में कपड़ा लत्ता बा एहर और फैलल बा कितना खराब लागेला, और उहे देखा सजा के सरिया करके और एक तरफ रखल रहला तो कितना अच्छा लागेला देखे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये एक तरह से अनुशासन का अर्थ समझल जा सकेला कि बच्चों लोगन के भी अंदर ऐसे ही होके के चाहिए कि मन में उद्दंडता कम होए के चाहिए, लेकिन हम लोगन के अंदर अनुशासन के महत्व के समझे के और अपनावे की जरूरत बा।
0: बिल्कुल बचवा लोग सुनत हैं और ध्यान दी हैं बात के, लेकिन समय इशारा करत बा कि कार्यक्रम ही समेटल जाए
1: तो
0: तो
1: चलल जाए
0: चलल जाए। तो
1: तब बचवा
0: बचवा
1: बोला
0: बोला
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी को फिल्म हमको तुमसे प्यार है में। गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अभी आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद के संगीत निर्देशन में प्रवीण भरद्वाज के लिखे गीत को गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम था शिकार। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:18 होने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे हमारे लखनऊ केंद्र से हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्थानीय कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 912 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने में देंगे 1,00,000 से अधिक युवाओं को नौकरी। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में 2 दिवसीय प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। महिलाओं की गरिमा की रक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मेरठ में भारतीय वायुसेना के एयर शो में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है देश। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और वाराणसी में यूपी एटीएस ने 30,00,000 के इनामी नक्सली ब्रजेश गंजू को किया ढेर, 20 साल से था फरार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, राज्य सरकार इस तरफ गंभीरता से ध्यान दे रही है ताकि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास कायम रहे।
4: जब किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन सुचतापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से किसी परीक्षा के माध्यम से संपन्न होता है, तो चयन की प्रक्रिया केवल एक व्यक्ति के परिवार के लिए नहीं, बल्कि शासन और कॉमन मैन के प्रति एक विश्वास का प्रतीक भी बनता है।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि जब योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है तो परिवर्तन खुद दिखाई देता है। प्रदेश में पिछले 9.5 वर्ष में आया बदलाव इसका जीवंत उदाहरण है। श्री योगी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेंगे तो प्रदेश नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में खुद को स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर जिले के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेरणा विमर्श 2026 के तहत उत्कर्ष नारी सम्मान और युवा स्वाभिमान समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में पारदर्शी और व्यवहारिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रदेश में इस समय महिला वर्क फोर्स की भागीदारी पिछले 9 सालों के दौरान 12% से बढ़कर लगभग 37% हो गई है। आगरा, काशी, गोरखपुर और लखनऊ में दुग्ध उत्पादक काम कर रहे हैं, इनमें 4,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सेवा संकल्प अभियान की विशेष

0: श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
2: आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। मुझे इस बात का संतोष कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है।
1: काशी के बुनकर और कई पुरस्कारों से सम्मानित मोहम्मद यासीन ने बताया कि मेक इन इंडिया पहल से काशी की हस्तशिल्प और बनारसी साड़ियों को देश विदेश में पहचान और बाजार मिला है।
3: हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से बनारस में काफी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो यहाँ की बनाई हुई साड़ियाँ और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते हैं।
1: पर्यटन के साथ ही वाराणसी आज बनारसी साड़ियों के जरिए मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बन रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेरठ के मोदिनीपुर न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प का नतीजा है कि भारत रक्षा उत्पादन निर्यात कर रहा है और रक्षा मंत्रालय भी नए और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: 10-12 साल पहले रक्षा का एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ था, आज 38,424 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वदेशी आत्मनिर्भर, उस ओर भारत का रक्षा मंत्रालय बड़ा है। और आज जो अद्भुत नजारा होगा तो हजारों हजार युवाओं को प्रेरणा। 2047 विकसित भारत एक ही लक्ष्य है पूरे देश का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, 100 साल कैसा होगा? वो ताकतवर भारत, वो मजबूत भारत, वो आत्मनिर्भर भारत, वो स्वदेशी से ही, वही प्रेरणा युवाओं में आएगी।
0: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को ही मिले। पेश है एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पैक्ड खाद्य उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैक किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के पैकेज पर वास्तविक विनिर्माण तिथि दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। पैकिंग की तिथि को विनिर्माण तिथि के स्थान पर अंकित नहीं किया जा सकेगा। यूपीएटीएस ने आज वाराणसी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के सरगना ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। लगभग 20 वर्षों से फरार चल रहे ब्रजेश गंजू पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नक्सली ब्रजेश गंजू के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आपराधिक

0: संयंत्र और लोक सेवकों पर हमले समेत 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसमें आम नागरिकों और पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले भी शामिल हैं और उसे 8 साल पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में वांटेड घोषित किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगामी साक्षात्कार के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग आगामी 23 सितंबर से विशेष मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम कई चरणों में संचालित होगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की बारीकियों का अभ्यास कराया जाएगा। प्रदेश के कुछ जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना भी व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 912 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीनों में देंगे 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में 2 दिवसीय प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। महिलाओं की गरिमा की रक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मेरठ में भारतीय वायुसेना के एयर शो में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा देश। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और वाराणसी में यूपी एटीएस ने 30 लाख के इनामी नक्सली ब्रजेश गंजू को किया ढेर, 20 साल से था फरार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: अभी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल के लिखे गीत को श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम था अतरंगी रे।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और शाशा त्रिपति को फिल्म ओके जानू में। गीत को लिखा था महबूब ने और संगीत दिया था बादशाह और तनिष बागची ने।
1: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
2: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
1: सीकेवाईसी मतलब?
2: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
2: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: अभी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल के लिखे गीत को प्रीतम के संगीत निर्देशन में गाया था अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह ने। फिल्म का नाम था लव आजकल।
1: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
2: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
2: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
2: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को तनिष बागची के संगीत निर्देशन में गाया था विशाल ददलानी और जरा खाने। फिल्म का नाम था कोई जाने ना।

अभी आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में गाया था वरुण जैन, सचिन जिगर, शादाब फरीदी और अल्तमस फरीदी ने। फिल्म का नाम था जरा हटके जरा बचके।

अभी आप सुन रहे थे प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को गाया था अजीत सिंह और निकिता गांधी ने। फिल्म का नाम था टाइगर 3। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सब्र सब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को जतिन ललित के संगीत निर्देशन में गाया था उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने। फिल्म का नाम था यारा दिलदारा।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे बॉस फिल्म का ये गीत। आवाजें थी अजीत सिंह और नीति मोहन की। गीत को लिखा था मनोज यादव ने और संगीत दिया था चिरंतन भट्ट ने।

आवाज थी अजीत सिंह की, गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत दिया था जीत गांगुली ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त हुआ।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि की 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: FM 107 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, रात्रि 9 अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु।

0: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
4: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा

0: उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
1: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
0: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
2: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान की वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news.

आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सफर फिल्म का ये गीत। आवाज थी किशोर कुमार की। गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म लोफर में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
2: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट

कार्यक्रम के आखिरी में आपने सुना कटी पतंग फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और आवाज़ थी किशोर कुमार की। इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त हुआ। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: वालों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है।
1: घोर बेइज्जती, घोर बेइज्जती।
2: क्यों भाई? बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं।
3: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए? तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया?
2: हाँ।
3: भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
0: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
3: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
2: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
3: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई। हाँ। और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने ले ली। पर भाई, वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ।
4: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
0: अच्छा जोशी साहब, हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे? तमीज की कमीज वाले या हमारी तरह के?
3: ये देशमुख, पूछो मत। तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा।
0: अच्छा।
3: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बत्ती।
4: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
3: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
0: अच्छा।
3: हम भले और हमारा काम भला
0: हो,
3: पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा।
4: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
3: हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
5: चंपी चंपी बोलो, चंपी चंपी चंपी बोलो, चंपी।
0: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
3: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
2: अजी साहब, अपने ऑफिस में चार पांच दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
3: कौन सी लड़की?
2: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
0: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
3: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
0: बता रहा हूँ जोशी साहब,
3: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
0: आप भी ना।
2: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है।
0: हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है?
6: जोशी साहब, जोशी साहब।
3: हाँ बोलो बोलो करने।
6: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना,
0: मिस साने।
6: हाँ मिस साने। अजी साहब, वो हाफ मैट है।
3: हाफ मैट?
6: हाँ हाफ मैट।
3: कैसे?
0: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने करने का?
6: अजी साहब, बड़ी अजीब लड़की है।
2: अरे आखिर हुआ क्या?
6: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली। उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग कर्णिक, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाए। और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस। आप ही कहिए, कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या?

0: पगली है वो पगली।
1: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो कर्णिक, किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
2: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, है? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
3: अरे कर्णिक, वो मंजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
1: देख कर्णिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस्सा ने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
2: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
1: तो दीजिए ना सबूत।
2: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
1: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? कर्णिक सही कह रहा है?
3: हाँ मांजरेकर, कर्णिक का कहना सही है, मिसाने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
2: क्या कह रहे हो, मिसाने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
3: अब मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
4: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्तों।
5: अरे जोशी जी,
4: मेरे पास आ गए। मैं चलता हूँ।
1: अरे भाई अनारकर।
6: जी सर।
1: जरा इधर आओ।
6: जी सर।
1: ये लो ये फाइल, बड़े साहब के पास ले जाना, और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
6: जी अच्छा।
7: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
1: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
7: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
1: काम?
7: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे, आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
1: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
7: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
1: जी फाइल कहाँ है?
7: ये लीजिए।
1: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
7: कहाँ ये?
1: हाँ ये और ये जो, हाँ नीचे ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स।
7: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रीकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
1: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये, जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
7: थैंक यू।
1: नहीं नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
7: मिस्टर मांजरेकर, एक मिनट रुकिए।
1: जी
7: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
1: मेरे साथ मगर मैं।
7: चलिए मिस्टर मांजरेकर आइए।
1: जी जी जी

0: वैसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रही हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: नहीं कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।

0: वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
1: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
0: आप बस कहाँ से लेती हैं?
1: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर, है? नमस्ते।
1: माफ कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
0: बस गया रे। वो मुझे आज
1: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
0: नहीं नहीं, वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा, आज्ञा दीजिए। हैं,
1: अच्छा
0: जी जी, कल मिलते हैं।
1: बाय
0: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर बड़ा डली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई। अरे सचिन, बहुत देर लगा दी आज तूने।
0: हाँ दीदी, जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
2: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा अब तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
0: दीदी।
2: क्या हुआ?
0: दीदी अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
2: हाँ, नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
0: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
2: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं, दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
0: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
2: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए, वगैरह वगैरह। क्यों रे, कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
0: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
2: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
2: ठीक है ठीक है, लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी, घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
0: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
2: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी। बस
0: सचमुच?
2: बस रे, तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
0: दीदी क्या कह रही हो तुम, अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
2: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार है, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन, अब तो शादी कर ले ठीक। कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
0: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
2: पगला कहीं का।
0: पगला?
2: अरे
0: कोई
2: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
0: नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम, सच बताऊं, जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
2: क्या?
0: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
2: पगली?
0: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
2: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
0: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम तो मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे
2: तुझसे भी पूछा?
0: अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के करणिक और बापट से उसने पूछा था।
2: बड़ी विचित्र सी लगती।

0: ये लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन है।
0: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है। बहुत अच्छी है, बीए बीटी, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
0: हाँ हाँ
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
0: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है। वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है, और हाँ खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है। आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में दो साने।
0: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है। बात चलाऊं?
1: लो, अभी तो मैं दो दो साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ, और तुम हो कि एक साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
0: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर। पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? विभावरी के घर हुआ।
1: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
0: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
1: ये लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
0: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से। उसी को लाने के लिए मेरा दूत बनकर चले जाना।
1: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
0: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।

0: यस।
1: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
0: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है। आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
1: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी।
0: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
1: वो घर पर है क्या?
0: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
1: सुरेखा।
0: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
1: थैंक यू।
0: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
1: जी।
0: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ।
1: ओह।
0: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर। आप भी नहीं खोलना?
1: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
0: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं, दीदी कहती हूँ।
1: अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
0: ये तो मुझे मालूम है।
1: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
0: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
1: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?

0: किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
1: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
0: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
1: सॉरी सॉरी, भूल गया था।
0: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
1: हाँ।
0: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
1: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
0: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
1: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
0: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
1: हाँ।
0: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांजरेकर।
1: मिस साने,
2: आप यहाँ?
1: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
1: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
0: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मांजरेकर आइए, अंदर आइए।
1: थैंक यू।
2: आइए बैठिए। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया?
1: स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
1: वो मेरी दीदी है।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
1: आपके बारे में।
2: मेरे बारे में क्या
1: सोच रहा था? कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूँ?
1: जी
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
1: मैं समझ सकता हूँ, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
1: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस साने
2: जी,
1: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
2: क्या कहती है?
1: कहते हैं कि आप
2: पगली हैं।
1: जी
2: ठीक ही तो कहते हैं।
1: यानी सचमुच आप?
2: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
1: मैं समझा नहीं।
2: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलिप्त रहने में आसानी होती है। सोचो अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
1: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
2: मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
1: हाँ? नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
2: मेरे लिए
1: मिस साने,

0: मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
1: और कौन है? बोलो।
0: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी, एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी?
1: सचिन,
0: मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
1: आप भी पागल हैं।
0: पागल?
1: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
0: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
1: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
0: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं।
1: सचिन,
0: विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
1: अभी?
0: हाँ, अभी।
1: ठीक है, चलो।
0: लेकिन वहां हंसने का पागलपन मत करना।
1: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
0: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
2: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकरीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा मायणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

यह आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको वीआर नटराजू और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत नादस्वरम वादन सुनवा रहे हैं। वीआर नटराजू कर्नाटक के कोलार जिले के बेत मंगला के एक प्रतिभाशाली नादस्वरम वादक हैं। आप एक समृद्ध और विशिष्ट संगीत परंपरा वाले परिवार से आते हैं। बहुत कम उम्र में ही आपका संगीत से परिचय हुआ। आपके पिता विद्वान वी रमेश आपके प्रथम गुरु रहे और उन्होंने नटराजू के संगीत व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता के मार्गदर्शन में आपने न केवल नादस्वरम वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि कर्नाटक शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया, जिससे शास्त्रीय संगीत की मूलभूत अवधारणाओं में आपकी मजबूत नींव तैयार हुई। नादस्वरम

0: अगली प्रस्तुति है त्यागराज स्वामी की रचना शशि वदना, जो राग चंद्र ज्योति और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज शशि वदना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग चंद्र ज्योति एंड आदि ताला।

0: रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं वी आर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: इंदी रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी। ही इज अकंपनीड ऑन स्पेशल तविल बाय यस सुधाकर।
0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए वी आर नटराजू और उनके साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं सामगान प्रियकरम। यह गुरु सूरजानंद की रचना है जो राग कीरवाणी और मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: Continuing their performance, we are Nataraju and Party now presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Surajananda, set in Raga Keeravani and Mishra Chaputala.

0: वीआर नटराजू और उनके साथी अपने वादन का समापन लोकप्रिय कन्नड़ भक्ति रचना गोविंदा निन्ना से कर रहे हैं। इस रचना के रचयिता महान संत कवि पुरंदर दास हैं। यह राग जन सम्मोदिनी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी कंक्लूड देयर रिसाइटल विद द पॉपुलर कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन गोविंदा निन्ना कंपोज्ड बाय ग्रेट सेंट पोएट पुरंदरदास सेट इन राग जन सम्मोधिनी एंड आदिताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपने सुना वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी।

0: राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहां आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहां नहीं आ सके थे और में हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर हाजिर होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।